FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के आश्विन मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 5 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 26 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां, संकलन वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा।

0: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान को सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं, जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से ना चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें। सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौली से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें। उसमें घोल तैयार करने का तरीका लिखा होता है। सांद्रित कीटनाशक को खोलते समय विशेष सावधानी रखें कि वो आपके हाथ पर ना गिरे। स्प्रेयर टैंक को कभी न सूंघें। स्प्रेयर टैंक को भरते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक जमीन पर ना फैले। स्प्रेयर तैयार करते समय खाना पीना वर्जित होता है। उपकरण लीक करने वाला या कहीं से भी खराब उपकरण को छिड़काव करने के लिए प्रयोग में ना लें। नोजल सही होनी चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से फूंक कर साफ ना करें। इसके लिए स्प्रे से बंधे पुराने टूथब्रश का उपयोग करें और पानी से साफ करें। घास फूस नाशक और कीटनाशक को कभी भी एक स्प्रेयर से छिड़काव ना करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें। इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में कीटनाशक ना डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह ना रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ ना रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 288।
2: एपिसोड नंबर 288 288।

रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई, नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा, नगरवासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे, स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

हमारी भारतीय संस्कृति की भावना का मूलाधार परोपकार है। दया, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति के मूल में परोपकार की ही भावना है। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित यानी परोपकार के समान धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा अधर्म नहीं। परोपकार ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है। प्रकृति से हम सीख सकते हैं, जो निरंतर प्राणियों के हित साधन में जुटी रहती है निस्वार्थ भाव से। सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वृक्ष, बादल, वायु हमें ये सिर्फ देते ही हैं। इनसे ही हमारा जीवन संचारित है और ये हमें यही संदेश देते हैं कि परोपकार एक आदर्श है, धर्म है, जो मनुष्यता की ओर ले जाता है। परोपकार यानी पर उपकार, दूसरों के लिए सोचना, सहायता करना, सेवा करना, यह इंसान को महानता की ओर ले जाता है। हमारे देश में न जाने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने दूसरों के लिए दीनहीनों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सत्पुरुषों की कमी नहीं है। परोपकारी मानव संत के समान हैं। ये अपने लिए चिंता नहीं करते हैं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हीं के लिए दिन रात चिंतन करते हैं। परोपकारी हृदय में कटुता नहीं होती है, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं होती है। सारा संसार ही उनका घर होता है, परिवार होता है। ऐसे लोग दूसरों के हित के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मृत्यु के बाद भी परोपकार करते हैं, अपने अंगों का दान करके। परोपकार के कई स्वरूप हैं। छोटे छोटे कार्य करके भी हम परोपकार कर सकते हैं। रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, ये तो महान कार्य हैं, पर छोटी छोटी मदद से आत्मसंतुष्टि भी होती है और परोपकार भी। भूखे को भोजन कराना, असहायों की अथोचित मदद करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जीव जंतु की रक्षा, दाने चारे की व्यवस्था, देखभाल, यह सब मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। व्यक्ति स्व की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त सतह पर खड़ा हो जन जन के कल्याण की ओर बढ़ता है, तो उसका व्यक्तित्व निखरता है और यह भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वरना इससे परे तो वह पशुवत है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कितना सार्थक लिखा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी सही बात कही है गुप्त जी ने। संसार के कितने ही महान कार्य परोपकार की भावना से ही संपन्न हुए हैं। महान देशभक्तों ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ही अपने प्राणों का बलिदान दिया। अनेक संत महापुरुषों ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय में समर्पित कर दिया और यही भावना विश्व बंधुत्व के रूप में लोगों को एक सूत्र में बांधती है। परहित में ही सबका हित समाहित है, इसलिए हमें चिंतन की आवश्यकता है। मनन करना चाहिए, इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने जैसा अधर्म नहीं।

चिंतन कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को। इसके साथ ही आज का चिंतन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है भक्ति सागर में गोते लगाने का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आराधना। आज की कलाकार है तृप्ति।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। कलाकार थी तृप्ति शाक्या। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में ये सुनते हैं डॉक्टर विष्णुपति सिंह से ली गई भेंट वार्ता।

0: कृत्रिम दांत और उनकी देखभाल।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दांतों की समस्या से हर लोगों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या हमारे वृद्धजन हों। किसी कारण से दांत सड़ जाती है और हमें दांतों को निकालना पड़ता है, और इसके एवज में हमें नकली दांत, जिसे हम कृत्रिम दांत कहते हैं या आर्टिफिशियल टीथ कहते हैं, वो हमें लगानी पड़ती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जो नकली दांत है या कृत्रिम दांत है किस तरह का होता है, उसकी देखरेख कैसे करें ताकि जो कृत्रिम दांत हैं उसकी उम्र लंबी हो और आपको किसी तरह की भविष्य में समस्या नहीं हो। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं रिम्स के सह प्राध्यापक दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुपति सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, दांतों की समस्या हर लोगों को होती है, तो हम बात करें कृत्रिम दांतों की। तो कृत्रिम दांत कितने तरह की होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कृत्रिम दांत लगवाने के समय में?
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम दांत होते हैं या आर्टिफिशियल टीथ जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो मुख्यतः दो तरीके का बनाया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड दांत, जो कि आपके मुंह में बचे हुए दांतों से सपोर्ट ले करके जो प्रोस्थेसिस बनती है और जिसे हम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हैं, वो एक फिक्स्ड तरीके की विधि हो गई और फिक्स्ड प्रोस्थेसिस उसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके का जो दांत का रिप्लेसमेंट होता है, कृत्रिम दांत जो बनते हैं, वो होता है एक रिमूवेबल मींस, मतलब उसको बनने के बाद पहनाया तो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है, लेकिन मरीज अपनी सुविधा के अनुसार उसे बाहर निकाल सकता है अपने मुख से और एक प्लास्टिक के बंद डब्बे में पानी में उसे रख सकता है। फिक्स्ड में ही दो तीन ऑप्शंस और होते हैं, जो आजकल एक नया तरीका है दांतों को मुंह में फिक्स तरीके से लगाने का, उसको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। एक डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है, जो हड्डी के अंदर हम उसे ड्रिल करके डालते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं, तो ये भी एक फिक्स्ड उपाय है दांतों को रिप्लेस करने का।
1: किसी साथी की एक दांत खराब हो या उसकी पूरी दांत खराब हो गई हो, तो वो कैसे देख रेख करे, क्या उपाय करें कि उसकी 32 दांत पूरी तरह से कृत्रिम रूप से लग जाए और उसकी देखरेख सही से करते रहे और उसका खान पान सही से होता रहे?
2: मुख्यतः हमें ध्यान ये देना है कि दांतों की परेशानी की जब शुरुआत हो तभी हमें सचेत हो जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये दर्द नहीं कर होता, दांत की दर्द से पाप परेशान नहीं होते हैं, मामूली सी कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अन्य रोगों के साथ भी करते हैं कि हम उसे बहुत सीरियसली तब लेते हैं जब हम उससे परेशान होने लगते हैं। तो जैसे पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं कि अगर आपके मुंह से ब्रश करते टाइम खून आने लगे, या जब आप बात करते हो किसी से और आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगे, तो ऐसी शुरुआती लक्षण हमें बताते हैं कि हम पायरिया की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो हमें एक अच्छी डेंटिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए और पायरिया का पूर्णतः इलाज आज संभव है। दांतों की साफ सफाई करने के बाद अब उसकी एडवांस सर्जरी भी होती है और ये सब करके हम दांतों को बहुत अच्छा रख सकते हैं और उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांतों की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट कभी भी जो नेचुरल टीथ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकता, वो
1: उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता।
2: वो उसके बहुत नज़दीक जाता है और उसके फंक्शंस, उसके एस्थेटिक और उसके बाकी सारे चीज़ों का वो रूप ले लेता है, बट हूबहू नेचुरल टीथ जैसा कुछ हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें देख रेख तो बहुत अच्छे से करना चाहिए अपने नेचुरल दांतों का, और शुरुआती लक्षण दिखते ही दांतों में सड़न का, खाने का फंसना या बदबू आना, ब्रश करते टाइम खून आना, तो हमें एक उपयुक्त डेंटिस्ट के पास जा कर के इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए इससे संबंधित, और इसकी देख रेख करके हमें इसकी लाइफ को बढ़ा लेना चाहिए
1: जी।
2: ब्रशिंग हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ये बार बार बोला जाता है और लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो रात का ब्रशिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह का ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो क्या है, आप सो जाते हैं और लगभग 10-12 घंटे का समय आप मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको देते हैं, खाने के ऊपर वो बैठ

0: हैं, जो भी खाना दांतों में लगा हुआ है, फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को ब्रश करें, दिन को तो करना आवश्यक है ही, बट रात को ब्रश करना उतना ही आवश्यक है। तो खाने के बाद जैसे थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, क्योंकि एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करने से निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके मुकाबले जो आप अगर अच्छी ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हो और उस तरीके से ब्रश करते हो।
1: डॉक्टर साहब, हम थोड़ी खर्च की बात करें, कृत्रिम दांत हम लगवाते हैं, चाहे एक हो चाहे पूरी दांत हम लगवाते हैं, तो खर्च कितना आता है और आपके यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी?
0: मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्टोरोंटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं वो मुफ्त में बनते हैं और रिमूवेबल दांत की सुविधा भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है जो बत्तीसी बनती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं किसी कारणवश जिनके मुंह में अब एक भी दांत नहीं है या चार पांच दांत बच गए हैं, वो हिलते डुलते अवस्था में हैं, उनसे वो अपने खान पान को सही ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे चार पांच दांतों को निकाल करके पूरी की पूरी बत्तीसी रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में बनती है और वो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो कोई भी लोग जिनको ज़रूरत हो बत्तीसी बनाने की, तो वो रिम्स में आए, 5 अपॉइंटमेंट विजिट होता है। नकली दांत बनाने का जो बत्तीसी बनती है वो 5 अपॉइंटमेंट में बनती है और एक एक दो दो दिन के अंतराल पे हम अपॉइंटमेंट देते हैं और लगभग 15 से 20 दिनों में आपको कृत्रिम दांत जो बत्तीसी है वो बन के तैयार हो जाती है। तो प्राइवेट में तो बहुत इसका कॉस्ट है, तो उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं, रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, या तो 32

0: माउथ इज़ द मिरर ऑफ द होल बॉडी. कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं. तो उसके लिए हम लोग हैं. आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा.
1: डॉक्टर विष्णुपति से ली गई भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे. कृत्रिम दांत और उसकी देखभाल भेंट करता थे इसके लाल. इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है. आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.

0: विधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमन्त्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्य
1: माउथ इज द मिरर ऑफ द होल बॉडी। कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग हैं। आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा।
2: डॉक्टर विष्णुपति से ली गई भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे, कृत्रिम दांत और उसकी देखभाल, भेंट करता थे इसके लाल। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गतमासस्य 18 दिनांके नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य राज्यानां कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठप्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य नवदिल्ल्यां 17वें निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां 97.8% यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गतविजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अन्तिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामुला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामुला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशामुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। 7:45 का समय है स्वर सरिता कार्यक्रम का। आज के कलाकार हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। सुबह के 8 बजे हम दिल्ली के अंदर से जुड़ेंगे, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे रांची के अंदर से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। कुछ फिल्मी गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे 8:45 पर। सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जो हार पलामो। 9:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। सुबह के 10 बजे दिल्ली के अंदर से हिंदी में समाचार रिले होंगे और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर मुंबई के अंदर से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 1 बजे दिल्ली के अंदर से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, दिन के 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची के अंदर से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार दिल्ली केंद्र से, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे, 2:55 पर रांची केंद्र से हम जुड़ेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली, 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार, 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम, 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार, 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे छाया गीत। पुनः हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम विवरण होगा 5:25 पर। 5:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन, लड़कियों के व्यक्तित्व विकास में माँ की भूमिका और शिक्षक के प्रति हमारा कर्तव्य विषय पर होगी चर्चा, और जय पूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता आप सुनेंगे मानव सभ्यता का नया अध्याय कृत्रिम बुद्धिमता। 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे, 6:02 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम होगा, 6:30 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे, 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे, 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा बुनियाद, 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर सुनील कुमार से ली गई भेंट वार्ता। रात्रि 8 बजे चित्रपट से कार्यक्रम। 8:15 पर नई सोच नया कदम। 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार और 9:15 पर उर्दू समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगी। रात्रि 9:30 विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से होगा रजनीगंधा कार्यक्रम। रात्रि 10:30 एक रंग के तहत आप सुनेंगे आज के फनकार। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और सभा की समाप्ति रात्रि के 11:10 पर होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है लोकगीतों के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं धर्मो नायक और साथियों को, और साथ ही आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में शहाबुद्दीन अंसारी और उनके साथियों को। आइए सुनते हैं पलाश कार्यक्रम के तहत कुछ लोकगीत।

भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

स्वर सरिता कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुबह के 8:30 बजे, राज्य केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3

0: दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहामला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानोल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: गालिम लोशन दांत खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
4: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
5: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा

0: देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स, पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
1: वी हैव बीन प्रोवाइडिंग देम विद ट्रेनिंग ऑन मार्केटिंग एंड पैकेजिंग।
2: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरमसांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
3: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
4: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में अपने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा, हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात, हिंदुस्तान ने लिखा है। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भारत साल ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी इनने ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में करेंगे। घर से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद स्विस प्रेसिडेंट गी पामेला इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल कार्गो वॉयेज फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम दिस मॉर्निंग। IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Pamela will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and

0: there. It says Hamami probe widens in Australia with social media posts reportedly linked to the pilot draw scrutiny as investigators reconstruct the history. Final airline audit this week ahead of US checks on safety covering all Indian Airlines, another headline in the Hindustan Times. And finally, dazzling light, musical show mark end of Asian Games as India finishes fourth, Qatar to host next edition, says the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmela in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa today. Fly Dubai Flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 2026 in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते हैं।
4: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था।
3: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
4: अरे देख के, हाय गिर गए।
5: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
6: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
7: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
10: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज
9: 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
10: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा।
9: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
11: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का किया पुनर्गठन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बने सूचना प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 207 छात्रों को सौंपेंगे डिग्रियां। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मौसम विभाग ने आज हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सहित राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और तेज हवाओं की जारी की चेतावनी। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू, रात से ही काउंटरों पर डटे फैंस। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देवघर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दुबे ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच समिति फेक न्यूज, अश्लीलता और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कॉन्टेंट रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
13: उन सबों के आभारी हैं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी आज के समय में दी है और हम कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेवारी दी है उसको हम कानून सम्मत जो है ठीक से निभा पाए। जो यूट्यूबर्स हैं जो कि बिना किसी पाबंदी के कोई भी न्यूज डालते हैं, बच्चों का जो माहौल खराब करते हैं, महिलाओं के ऊपर जो उल्टे सीधे गलत टिप्पणी करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हमारी कमेटी चिंतित भी है और उसके बारे में एक नया बिल लेके आएंगे।
12: झारखंड रक्षा शक्ति मंत्रालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित हो रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 207 छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए गोल्ड सम्मान ने राज्य के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत दी कि राज्य में शासन व्यवस्था का स्तर लगातार गिर रहा है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था में सुधार करने और जनता का भरोसा वापस कायम करने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने भी राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है।
14: पिछले 6 सालों में बहुत तरह के घोटाले आए हैं और जब भी इन घोटालों की बात आई है तो इनका मास्टरमाइंड किंगपिन जो भी होता है वो हेमंत सोरेन जी का करीबी होता है। उदाहरण के लिए हेमंत सोरेन जी के करीबी माने जाने वाले विनय चौबे को खुद की सरकार ने शराब घोटाले में माना कि वो लिप्त है, और उसके बाद जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो अगेन जो है सीएम के करीबी माने जाने वाले अनुराग गुप्ता, उनकी भी भूमिका ऊपर आ रही है।
12: इस पर पलटवार करते हुए झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा नेता हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और लोकप्रियता से बौखला
15: लालू यादव जी से सीखना हो, ममता बनर्जी से सीखना हो, कि योगी आदित्यनाथ से सीखना हो, कि सम्राट चौधरी से सीखना हो, ये सीखने की चीज इस तत्परता के साथ यहाँ पुलिस का पुलिसिंग हो रहा है और हर कांड का उद्भेदन हो रहा है, ये किसी भी भाजपा शासित राज्यों की तुलना में आप इसको देखेंगे तो ये सबसे बेहतर राज्य।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत सरायकेला और जामताड़ा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरायकेला में भाजपा नेत्री रीता दुबे के नेतृत्व में महिलाओं ने दीप जलाकर और आकर्षक रंगोली बनाकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं जामताड़ा के हनुमान मंदिर प्रांगण में भी रंगोली सजाकर और दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ के आनंद राव ने कहा है कि देश में पिछले 60 वर्षों से यूरेनियम का सुरक्षित खनन हो रहा है। जमशेदपुर में उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश में नई खदानें शुरू की जाएंगी, जिससे 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
16: पॉजिटिव परसेप्शन बढ़ाने के लिए ये पूरा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो यूरेनियम हम निकाल रहे हैं ये आपको क्लीन एनर्जी देने के लिए बहुत उपयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट इधर ही से पूरा एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंडिया में, और जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट दिया है भाई विकसित भारत 2047 के लिए यूरेनियम का जरूरी है।
12: रांची के धुरवा में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समितियों की अहम बैठक हुई। इसमें 35 पूजा समितियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने पंडालों में सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण और अग्निशमन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
17: आज बैठक थे और दुर्गा पूजा समिति के भी शांति समिति के भी लोग थे, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में, सीसीटीवी के संबंध में, और वॉलंटियर्स खासकर महिला युवाओं को जोड़ने का उसके संबंध में सारी चीज हम लोगों ने बताए, और शांति समिति के साथ लगातार वो लोग संपर्क में रहेंगे।
12: मौसम विभाग ने आज हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सहित उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में गरज चमक के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने 6 और 7 अक्टूबर को भी राज्य में कहीं कहीं वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। क्रिकेट। रांची के जयसीएस स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू हो रही है, जिसके लिए प्रशंसक रात से ही कतारों में डटे हैं। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी के लिए पूरा मैदान सज चुका है और दर्शकों की सुविधा तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
18: झारखंड के लिए मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है कि हम लोग सफलतापूर्वक इंटरनेशनल मैच का आयोजन कर ले। दर्शकों से सिर्फ मेरा एक आग्रह रहेगा कि लोग जो टिकट के पीछे जो प्रिंटेड होता है कि आपको कितने बजे आना है, गेट्स कितने बजे खुलेंगे, क्या लेके नहीं आना है, इन चीजों का विशेष लोग ध्यान रखें। कि कालाबाजारी टिकट के लोग करते हैं तो उसके लेके लोगों से अपील हो, ऐसा कुछ भी कहीं सूचना मिलती है इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जीएसए को सूचना दे।
12: दुमका में आयोजित 2 दिवसीय 17वीं झारखंड राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें टाटा आर्चरी एकेडमी के गोल्डी मिश्रा और खुशी कुमारी ने रिकर्व, व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। वहीं इंडियन राउंड में योगेंद्र हैसा और बेबी कुमारी विजेता रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की खिलाड़ियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर रांची लौटी झारखंड की बेटियां, सीएम ने मिठाई खिलाकर उत्साह बढ़ाया। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम। दैनिक जागरण लिखता है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने संशोधित राज्य स्तरीय मेधा सूची पर जताई आपत्ति। प्रभात खबर ने लिखा है, रांची से लौटा मॉनसून, आज से 8 अक्टूबर तक लगातार छाए रहेंगे बादल। वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का किया पुनर्गठन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बने सूचना प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 207 छात्रों को सौंपेंगे डिग्रियां। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। मौसम विभाग ने आज हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सहित राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और तेज हवाओं की जारी की चेतावनी। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत वेस्टइंडीज T20 मैच के टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू, रात से ही काउंटरों पर डटे फैंस। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
19: बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
20: अचानक हाथ पांव लुंजपुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
19: बच्चे को 1 साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
20: 1-1 महीने के अंतर पर दिलाएं।
19: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
20: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल,
19: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
20: 2 बूंद जिंदगी के।
21: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
22: भूल गए आज कौन सा दिन है?
23: गुरुवार है।
22: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: समाचारों के बाद स्वागत है आपका, पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं आंधी फिल्म के गीत से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की के इस गीत के साथ ही आज का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सुप्रभात दोस्तों, और आप सभी को हमारा जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से करते हैं, ऐसे सुविचार जो हमारा जीवन बदल दें अगर हम करें इन पर अमल। तो आज का सुविचार, किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। महात्मा गांधी। जी हाँ, यह विचार महात्मा गांधी के हैं, यानी कि जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे बनेंगे। तो भरसक कोशिश कीजिए कि आपकी सोच हमेशा हर हाल में सकारात्मक रहे, और अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और अभी देखिए मौसम भी कितना अनुकूल है, न ज़्यादा ठंड न गर्मी, यानी बीच का मौसम है और अच्छा लग रहा है मौसम। थोड़ी धूप भी आप लिया कीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी का लेना भी बेहद ज़रूरी है। बात करें तापमान की, तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस कल है।

6 अक्टूबर कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। तो इस मौसम का ये लुत्फ उठाते हैं इस गीत के जरिए।

इस खूबसूरत गीत के बाद खबरों की दुनिया की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा से खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया, यह कहना है झारखंड के सीएम का। झारखंडी बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया है, खेल इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की झारखंडी खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इन खिलाड़ियों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेन शामिल थी। खिलाड़ियों से विधायक कल्पना सोरेन ने भी मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से उनके शानदार प्रदर्शन की तैयारियों से संबंधित जानकारी ली और उनके अनुभवों के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर इस शानदार उपलब्धि के लिए उनके हौसला अफजाई की और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त कर स्वर्णिम सफलता अर्जित करने में झारखंड के खिलाड़ियों का योगदान राज्य और देश के लिए गौरव और सम्मान की बात है। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन और अदम्य जज्बे से देश का गौरव बढ़ाया है। दस जिलों में आज वज्रपात और तेज हवा का किया गया अलर्ट जारी। झारखंड के 10 जिलों में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा शामिल हैं। विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 8 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान पाकुड़ में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान लातेहार में 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कार्यकर्ता संवाद से संगठन को मिलेगी मजबूती, महुआ डाड़ में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा। संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होने और स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए शनिवार को महुआ डाड़ पहुंचे केंद्रीय अन्नपूर्णा देवी, भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद कालीचरण सिंह और पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह का कुरुनद घाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। वरिष्ठ नेताओं के आगमन की सूचना पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कुरुनद घाटी पहुंचे। नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेताओं का अभिनंदन किया। पार्टी के विभिन्न मंडलों और स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नेताओं के आगमन को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के क्षेत्र में पहुंचने से स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूती मिलती है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। दुर्घटना संभावित स्थलों का SDPO ने लिया जायजा, वाहन जांच तेज करने का दिया निर्देश। छतरपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग, बिना हेलमेट और सड़क पर गलत तरीके से पार्किंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के दुर्घटना संभावित और पूर्व में दुर्घटना हो चुके स्थलों का निरीक्षण किया और इस दौरान सड़क की स्थिति, तीखे मोड़ और अंधे क्षेत्र, तेज गति वाले स्थानों और सड़क किनारे अनियमित रूप से खड़े वाहनों से उत्पन्न जोखिम का जायजा लिया। उन्होंने थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारियों को ऐसे स्थलों को चिन्हित कर नियमित वाहन जाँच करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। मुख्य सड़क, मोड़, पुल और चौराहे पर यातायात बाधित करने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दस दिनों से
ठप पेयजल आपूर्ति आज से बहाल होने की है उम्मीद। हुसैनाबाद से खबर है, नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से ठप पेयजल आपूर्ति सोमवार से बहाल होने की उम्मीद है। शहरी जलापूर्ति योजना की मोटर में तकनीकी खराबी और उसके बाद केबल जलने से शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे विभिन्न वार्डों के लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अब कुछ बातें खेल जगत से। दो सौ 77 कराटे खिलाड़ियों का बेल्ट ग्रेडेशन, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रातू रोड स्थित श्री अरविंदो सोसाइटी कराटे केंद्र में एक दिवसीय विशेष कराटे प्रशिक्षण सह बेल्ट ग्रेडेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व फेडरेशन के मुख्य कराटे प्रशिक्षक एवं मुख्य तकनीकी निदेशक हंसी मानस सिन्हा ने किया। उन्होंने सफ़ेद बेल्ट से भूरे बेल्ट तक के कराटे खिलाड़ियों का परीक्षण कर ग्रेडेशन किया। शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के कुल 277 कराटे खिलाड़ियों का ग्रेडेशन में उत्तीर्ण घोषित किया गया और उन्हें औपचारिक रूप से बेल्ट प्रदान किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों को भी श्री अरविंदो सोसाइटी हिसस शाखा के सचिव रमेश भाई ने पदक पहनाकर सम्मानित किया। एशियन गेम्स की चैंपियन बेटियों के स्वागत में झूमा झारखंड। ढोल नगाड़ों से गुजा बिरसा एयर मुंडा एयरपोर्ट। सलीमा, निक्की, ब्यूटी और दीपिका का हुआ भव्य स्वागत। जापान के आइची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में झारखंड की चार बेटियों का अहम योगदान रहा। स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तान झारखंड की सलीमा टेटे के साथ ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और युवा स्टार दीपिका सोरेंग रविवार को अपने गृह राज्य झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। जापान से बेंगलुरु होते हुए रांची पहुंची चारों चैंपियन खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारी, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। जैसे ही चारों खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकले, पूरा परिसर ढोल नगाड़ों की गूंज से झूम उठा। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने हॉकी स्टिक उठाकर तथा फूल मालाओं के साथ अपनी चैंपियन बेटियों का जोरदार स्वागत किया। सबसे भावुक क्षण उस समय देखने को मिला जब चारों खिलाड़ियों ने अपने माता पिता और परिजनों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने चारों खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर, पुष्प गुच्छ देकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस दौरान पूरा एयरपोर्ट परिसर भारत माता की जय, झारखंड की बेटियां जिंदाबाद और भारतीय हॉकी के जय घोष से गूंजता रहा। इन खबरों के बाद आपको ये सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और अब बातें आज के इतिहास की। आज है 5 अक्टूबर 1989 में मीरा साहब फातिमा बीबी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी। तारीख थी 5 अक्टूबर 2011 में आज के दिन दुनिया भर में डिजिटल क्रांति लाने वाली कंपनी एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन हुआ था। 1524 में रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध और साहसी वीरांगना रानी का जन्म हुआ था। 1902 में मैकडोनल्ड्स को दुनिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बनाने वाली व्यवसायी रे कॉर्क का जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो 1981 में भगवती चरण वर्मा, जो कि हिंदी जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार थे, इनका निधन हुआ था आज ही की तारीख को। 1991 में रामनाथ गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संस्थापक और भारतीय पत्रकारिता के स्तंभ थे, इनका निधन हुआ था 5 अक्टूबर को। और कुछ बातें हम और करेंगे सेहत से जुड़ी हुई, उससे पहले आइए सुनते हैं कि

0: गीत संगीत के अलावा आपकी सेहत रहे मजबूत, इसका भी हम रखते हैं ख्याल। तो सेहत के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, कैल्शियम को सोखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है विटामिन डी। यह शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का संतुलन बनाए रखता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियाँ नहीं होती। यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहद जरूरी है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती। दैनिक खुराक में वयस्कों के लिए रोजाना 600 से 800 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो आपको थकान नहीं होगी, आपको कमजोरी नहीं होगी और डिप्रेशन नहीं होगा आपको। और साथ ही विटामिन डी के स्रोतों की बात करते हैं अगर, तो धूप में सबसे अधिक विटामिन डी है। सुबह की हल्की धूप में 20 से 30 मिनट बैठना इसका सबसे प्राकृतिक और मुफ्त स्रोत है। खान पान में अंडे की जर्दी, फैटी फिश और फोर्टिफाइड दूध का सेवन करें। सप्लीमेंट्स की बात करें तो यदि शरीर में गंभीर कमी है तो डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन D3 की गोलियां या कैप्सूल आप ले सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके सुझाव के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अभी यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
3: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
3: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
3: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
3: स्त्री शिक्षण को अपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
3: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
2: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
3: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
2: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
3: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
2: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
3: जी।
2: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
2: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
3: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
3: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
2: जी।
3: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
2: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
3: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
3: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
4: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
3: जी।
4: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
3: जी।
4: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
3: जी।
4: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
3: जी।
4: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
3: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
4: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षणा हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारतवर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
3: जी।
4: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहाँ मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारी जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
3: भावना
4: आती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी सातवीं आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं। और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं। और बच्चे आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे। और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
3: अलग अलग कलाएं हैं,
4: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
3: जी, तो प्रोफेसर गौरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
4: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें, और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारी पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
3: उनको जरूरत लेके जाएं, उनको बताएं,
4: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ये होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो। और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है। मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे छठी से आठवीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है। और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए
3: जी,
4: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज
3: जी। अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
4: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी,
3: जी
4: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहाँ जहाँ उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है। और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहाँ जहाँ समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6, कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया उनके बारे में चर्चा किया गया है। और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
3: कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
4: सभी क्षेत्र में
3: जी
4: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
3: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
4: अरे वाह, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया।

0: है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
1: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
2: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
1: प्रिया बोली,
0: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
1: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
2: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
1: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
0: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का लुत्फ आप उठाएंगे। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।
4: कलाकार थे चिर सत्य ठाकुर, तबले पर संगत दे रहे थे संदीप चटर्जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पाहमला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
1: इंडिया एंड रशिया हैव हिस्टोरिकली वेरी गुड रिलेशंस।
2: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा सा हमारे पड़ोस देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है।

0: भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इटली के अखबार कोरियेरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की कोशिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। अखबार के अनुसार ओमानी सह पायलट हम्माम अल हम्मामी ने विमान पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmela will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmela will be on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmela will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmela will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will also call on President Parmela. Our correspondent reports that this is President Parmela's first visit to India and second visit this year.
2: Earlier, in February this year, the Swiss president visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges and deepen cooperation in new areas of mutual interest. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tributes to Guru Nanak Dev on his Jyoti Jyot Day today. In a social media post, Mr. Birla said that Guru Nanak Dev imparted lessons of truth, compassion, humanity and goodness to the world through his life. He added that Guru Nanak Dev fearlessly raised his voice against the superstitions, discrimination, caste hierarchies and social evils prevalent in society. The Lok Sabha speaker emphasized that Guru Nanak Dev's message, based on love, compassion, service, truth, brotherhood and mutual respect, remain just as relevant today. Defence Minister Rajnath Singh has paid tributes to Rani Durgavati on her birth anniversary today. In a social media post, Mr. Singh said that Rani Durgavati accorded the highest priority to the welfare of her subjects and the prosperity of the state while promoting endeavours for the public. He added that the reign of Rani Durgavati was inspired by a spirit of benevolence towards the people, far-sightedness and good governance. In Brazil, Flavio Bolsonaro has won against the incumbent president Luiz Inácio Lula da Silva in the first round of Brazil presidential election, but failed to cross the 50% mark needed for an outright victory, setting up a closely watched runoff on October 25th. With 98.81% of the votes counted, Bolsonaro secured 47.24% of the vote, while Lula received 44.91%. Under Brazil presidential election system, a candidate must secure more than 50% of the vote to win in the first round. In Assam, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, will flag off the maiden international cargo voyage from the newly constructed Bogibeel terminal in Dibrugarh today. Chief Minister Himanta Biswa Sarma will also join the flag off ceremony. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, in Ottawa today, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day negotiations will continue till the 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on the 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement. India concluded its campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze, finishing fourth in the overall standings. India's campaign produced a series of landmark achievements across disciplines. The defining feature of India's campaign was its clean sweep of the gold medals in the men's and women's cricket, kabaddi and hockey. And that is the end of this news bulletin.
3: ना लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे.
4: नोटेशंस.
3: नोटेशन लिखना. To use a big orchestra, you had to have somebody जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले. तो ये सब अरेंजर किया करते थे.
4: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है, उसके नोटेशंस.
3: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
4: जी
3: वो बहुत जरूरी है.
4: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
3: जी,
4: में
3: जी.
4: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
3: जी,
4: बजेगा.
3: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही करते थे. फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है
4: जी.
3: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं. मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया. मदन साहब को पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा. फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो. उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं. यस, साउंडिंग गुड. ओके.
4: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो.
3: वो चाहे बदल भी सकते हैं, क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर. लेकिन कराने वाले कौन?
4: अरेंजर.
3: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे. लिखने वाले मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए. मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे.
4: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी.
3: सोनिक जी, सोनिक ओमी. हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब. और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
4: जी
3: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन.
4: बाबा.
3: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वह लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
4: जी.
3: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था.
4: हाँ.
3: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया. मदन साहब नहीं थे. मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, हाँ ले लो. तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया. तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था. उन्होंने बताया पूरा सीन. डेढ़ मिनट का पीस था. मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो.
4: गजब.
3: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ. वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था.
4: ये मेमोरी सोनी जी
3: की. ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा. तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का. तो मास्टर जी वाज़ ए फैंटास्टिक अरेंजर, फैंटास्टिक कंपोजर उनके अपने पाने के भी कितने हिट हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा। सुना, ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां पे। ओके, टेक करो।
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है, नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: जी जी
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए। सिंगर्स का तो नाम आता है, पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया,
1: जी
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं
0: मैं
1: खुद।
0: अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का,
1: जी
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा,
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके।
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे

0: डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
1: ये मेरी डिसाइड है,
0: जी
1: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ, जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था,
0: जी
1: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी। म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
0: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं आजा
1: जी
0: शाम होने आई में
1: जी जी
0: हॉर्न की आवाज आती
1: जी
0: है।

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट,
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सोचे।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत देसाई साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पार्टी जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एच डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी।
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भिजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी गायन प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: लोगों भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनके साथ मैंने काम भी किया। तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी।
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया।
1: जी
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे
1: अच्छा
0: कार में। हाँ, वो
1: जी
0: 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया, सुबह 6 बजे। बोले, तो मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं कहा, मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुँचा। मैं कहा, मास्टर जी क्या हुआ? बोलते, यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा, क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं,
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी
0: तो बोलते, ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ। फर्स्ट म्यूजिक सुनाया, बोलते ये भी ठीक है, आप भी बोल रहे हैं ये भी ठीक
1: हाँ
0: है। फिर
1: हाँ
0: दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया, आ उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: मैं,
1: बाप
0: क्या
1: रे,
0: हुआ मास्टर जी? बोले, ये जो तुम 4 बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप,
0: मैंने कहा, मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले, तुमने नहीं सुना, लेकिन ये धनी राम जी के 4 नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये 4 नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया। मैं कहा, ये? और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी
0: देखिए,
1: रहे।
0: आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है,
1: जी
0: सबसे
1: जी
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और कॉपी नहीं करें,
0: ये
1: इसके लिए
0: कॉपी,
1: परेशान
0: किसी की
1: रहे।
0: कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे,
0: फिर उन्होंने वो 4 बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक
0: ईमानदारी की,
1: बहुत ही अद्भुत घटना
0: यस।
1: है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया,
0: जी,
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो रिजर्व के लिए बुलाया था उन्होंने,
1: अच्छा
0: लेकिन हो नहीं सका।
1: जी, सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी, डैडी
1: मोपेड, जी
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था,
1: अच्छा,
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
1: हाँ
0: हेराल्ड गाड़ी थी। तो
1: हेराल्ड,
0: जोर से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे कहा, मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहा अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे, ये जो आशीर्वाद है,
1: जी
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप,
1: जी, उसके
0: आशीर्वाद
1: काबिल
0: आपको
1: होना पड़ता
0: लेना
1: है।
0: पड़ता है,
1: जी
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया,
1: जी, और
0: लेकिन उनके
1: लगातार साथ रहा।
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: बजाते सेट करता था, फिर शुरू बजाते मारोड़ जी आके रिहर्सल करते थे 9 बजे, तो 9 सवा 9 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा काम, चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरी जी फ्लूट हो गए,
1: मनोहरी
0: मुरली
1: दादा
0: दादा की फ्लूट हो गए,
1: सेक्सोफोन।
0: सेक्सोफोन हो गए, चलो सोलो बजाना तो मनोहर वासुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया।
1: मारुति बजाते थे जी।
0: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन, पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे,
1: जी
0: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
1: क्या बात है, क्या बात है
0: और 9 रत्न कौन थे? मनोहरी
1: जी।
0: जी,
1: एक,
0: बासु जी
1: दो,
0: के, भूपी जी,
1: तीन, हाँ,
0: उसके बाद भानु, चार
1: चार,
0: मारुति,
1: पांच,
0: देवीचंद,
1: छः,
0: अमरुत,
1: सात,

0: होमीबुल्ला
1: आठ
0: और एक चंद्रकांत,
1: नौ गजब
0: ये
1: गजब
0: 9 लोग
1: जी,
0: उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे
1: ये सब हीरे थे, नगीने
0: ये।
1: थे ये
0: और
1: सब
0: इसमें
1: फिल्म
0: कई लोग
1: म्यूजिक
0: तो
1: के।
0: मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
1: हाँ
0: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
1: गजब गजब,
0: हाँ, चंद्रकांत
1: ये
0: हो
1: एक
0: गया,
1: पूरी
0: पूरी
1: टोली का।
0: टोली का काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके ड्रेसिंग रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
1: जी
0: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं
1: वाह वाह वाह,
0: खाना खाते हैं,
1: ऐसी
0: दारू पीते
1: सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में
0: हैं। हाँ
1: आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके
0: जी
1: बारे में
0: जी
1: बताइए।
0: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा आप इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो बजा, आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर,
1: क्या बात है
0: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं,
1: जी,
0: तो सुन लीजिए आप।
1: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था। मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं, हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था,
0: जी
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया
1: एक
0: था।
1: जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई
0: ओ
1: और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी की गलती हुई थी केवीएन, भूपे जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस? अरे उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था,
0: क्या बात है,
1: ही लाइक ए फ्रेंड, एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
0: वाह।
1: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। फिर सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा। फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी, आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए, ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर,
0: हाँ,
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला।
1: वायलिन सोलो का पीस था
0: अच्छा
1: सागर फिल्म,
0: जी,
1: तो जो वो कमल हासन बजाता है,
0: अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है, ये
0: हाँ
1: हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी।
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे?
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते,
0: जी
1: कितना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है, ऐसे
0: हाँ
1: नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे,
0: जी।
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई कि उत्तम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर, जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू टंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे,
0: स्नैप आ जाए।
1: तो हाथ से करना,
0: जी
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
0: जी
1: अभी, ये
0: हाँ
1: साउंड है,
0: जी
1: ये चाहिए, तार टूट गई,
0: हाँ
1: तो की 2-3 रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है
0: हाँ
1: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
0: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
1: नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता है।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार।
1: हाँ
0: बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया कि वो
1: काम करते रहने से हो जाता
0: काम
1: है।
0: करने से हो
1: ये जो
0: जाता
1: अजीब सा गाना था ये कौन सा
0: है।
1: था?
0: नहीं याद नहीं।
1: वो याद नहीं। अच्छा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, कर्ता अनुश्री पाठक।

0: विविध भारती के पे बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से

0: जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: अब विविध भाई आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विद भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ भारती।
3: हवा लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती ऑफिशियल पेज को।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

चंद्रदास की आवाज थी, निधा फासली के बोल थे। रंग तरंग कार्यक्रम की ये थी पहली पेशकश। जगजीत कौर की आवाज। बोल मिर्जा शौक के। मौसिकार खयाम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग। कलाम निदा फाजली का, आवाज कब्बन मिर्जा की, मौसिकार खयाम।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पाहमला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पाहमला के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पाहमला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पाहमला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक

0: शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले दो दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सलमा आगा की आवाज, हसन कमाल के बोल रवि की तर्ज। फिल्म का नाम है निकाह।

निशान फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। सही लुधियानवी की बोल आर डी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम जोशीला।

उत्सव फिल्म का ये गीत था वसंत देव के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरस थी। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारत

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम

0: Noon trade today, the Sensex rose 82 points to 71,992, while the Nifty added 28 points to 22,450 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को किया रेखांकित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रामगढ़ में श्रीमद भागवत कथा में हुए शामिल। लोगों से अपना आचरण बेहतर बनाने की अपील। हजारीबाग के चरही क्षेत्र में सीआईएसएफ ने ड्रोन सर्विलांस के जरिए की बड़ी कार्रवाई। 280 टन अवैध कोयला किया जब्त। और रांची में आयोजित खेलो इंडिया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के हॉकी वर्ग में सिमडेगा बना विजेता। एथलेटिक्स के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार अव्वल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल और सह प्रभारी सौरभ सिंह आज पहली बार रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्री सेठ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा।

0: भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने पुराने कलेवर और आज माननीय प्रभारी जी का आगमन हुआ है। निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो स्थिति है, फाइनेंशियल क्रंच है, रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स है, हर कोई परेशान है। छात्र जिनका भविष्य बेच दिया वो परेशान है, किसान परेशान, पर महिलाएं परेशान। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो खुश है, हर वर्ग नाराज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे ट्राइबल फाइट म्यूजियम और गौरव दिवस की। इसी कड़ी में झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अस्मिता को वैश्विक पहचान देने के लिए गुमला में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता यह जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्निशियस हाई स्कूल परिसर में स्थापित किया गया है। इस भव्य म्यूजियम में राज्य के पारंपरिक जनजातीय जीवन, कला और दुर्लभ कलाकृतियों को जीवंत रूप में सहेजा गया है। केंद्र सरकार के जनजातीय गौरव दिवस और ट्राइबल फाइटर म्यूजियम के विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
3: मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतरते देख झारखंड के विभिन्न जिलों से इस म्यूजियम को देखने आने वाले दर्शकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। इस कला दीर्घा का अवलोकन करने के बाद दर्शक अपनी खुशी जाहिर करते नहीं थकते।
4: मेरा नाम बेला टप्पो है और मैं आदिवासी संग्रहालय को देखने के लिए आई हुई थी और आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
5: मेरा नाम इमिल करकेटा है, मैं भारनो बोलोक सिसे प्रखंड पहाड़ बंगरू से आया हूँ। हम आदिवासी हमारे उठे किस तरह से जीवन यापन करते थे।
2: संक्षेप में कहें तो गुमला का यह जनजातीय संग्रहालय सिर्फ अतीत की कलाकृतियों को सहेजने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री के जन सेवा से देश सेवा के उस बड़े संकल्प को भी पूरा कर रहा है जो देश की जनजातीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल के साथ रांची के समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत रांची के डिबडीह में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित खिलौना निर्माण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से संवाद किया और उनके हुनर की सराहना करते हुए वोकल फॉर लोकल के महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद उन्होंने हटिया लटमा वृद्ध आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार रामगढ़ के जिमखाना क्लब रिसोर्ट में आयोजित श्रीमद भागवत कथा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। उन्होंने वृंदावन के कथावाचक महाराज मृदुल कृष्ण गोस्वामी से आशीर्वाद लिया और कहा कि समाज के लिए ऐसी धार्मिक कथाओं की बड़ी उपयोगिता है। राज्यपाल ने सभी से अपना आचरण बेहतर बनाने की अपील की। हजारीबाग के सीसीएल चरही क्षेत्र में सीआईएसएफ ने ड्रोन सर्वेलांस की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 280 टन अवैध कोयला जब्त किया है। कमांडेंट अमित कुमार के निर्देश पर दो दर्जन जवानों की टीम ने तापीन नॉर्थ परियोजना के आसपास घुमरी तिलैया नगर परिषद में अवैध चुंगी वसूली मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर अध्यक्ष रमेश हर्षधर की शिकायत के बाद हुई इस कार्रवाई में बरामद रसीदों पर कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता के हस्ताक्षर मिले हैं।
6: विभाग के द्वारा हम लोगों की एक इंटरनल कमेटी बना ली है 7 शरारतों के लिए। साथ ही साथ है कि बहुत सारे शरारतों को 2 बार से हम लोग ज्यादा कर चुके हैं, परंतु किसी के द्वारा लिया नहीं गया है। इसके लिए विभागीय गाइडलाइन भी है कि शरारतों का 10 संशोधन, तो इसके लिए हमने अपर समाहर्तक के यहाँ फाइल में भेजी है 10 संशोधन के लिए, ताकि 10 संशोधन किया जा सके जिसके कारण लोग शरारत में रुचि ले सके।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर, निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए प्रति किलो है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। एथलेटिक्स अंडर 17 के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार प्रथम रहे, वहीं हॉकी के बालक और बालिका दोनों वर्गों में सिमडेगा ने खिताबी जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। जनसेवा से देश सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को किया रेखांकित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रामगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल। लोगों से अपना आचरण बेहतर बनाने की अपील की। हजारीबाग के चरही क्षेत्र में सीआईएसएफ ने ड्रोन सर्वेलांस के जरिए की बड़ी कार्रवाई। 280 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। और रांची में आयोजित खेलो इंडिया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के हॉकी वर्ग में सिमडेगा बना विजेता। एथलेटिक्स के बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में लातेहार अव्वल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं उपशास्त्रीय संगीत का अनुरंजनी। आज आप सुनेंगे कलाकार गिरिजा देवी को, ख्याल अभोगी कानड़ा।

राज निराले हो जाते हैं, जीना तो हर हाल में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ तुकबंदियां यूं ही हम कर लेते हैं, मन की तरंगों को शब्दों में समेट लेते हैं, सुरीला सफर संग ताल में ताल कुछ मिला लेते हैं, कोई शाबाशी न दे तो खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं। भाई वाह। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इन नन्ही आंखों में जब भी झांकते हैं हम, भूल जाते हैं जिंदगी के सारे गम, क्या खूब जादू है इन मासूम चेहरों में, हमें फिर से हमारे बचपन से मिलाते हैं हम। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि शैलेंद्र सिंह आए थे

नायक बनने पर राज कपूर की कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और बाद में गायक बन गए। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जब बॉबी आई थी तब ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे घर का नाम बॉबी रख दिया गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर का आधा सफर ऑफिस पहुंचते पहुंचते निकल गया, अब इबारत क्या देखें जो गाने बाकी हैं, उनकी लिस्ट उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो देर से शामिल हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम के गानों का अंदाजा लगा रहे हैं। तो भाई इबारत में से एक गाना तो ये है, लेकिन आपको बताना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। और हाँ, जरा ये भी बताइए कि लंच टाइम हो गया है, आपके घर पर आज लंच में क्या बना है।

कई लोगों को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से मेन्यू लिख दिया है कि आज उनके लंच में क्या है। एक श्रोता है जो मक्के की रोटी और मक्खन है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते। आज सीजन का पहला साग और कढ़ी बनाई है, मक्के की रोटी और मक्खन साथ में है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे गांव देहात में लंच टाइम नहीं होता, एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन बन जाता है। एक और श्रोता है जो लंच करते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं और कहते हैं कि टिफिन में रोटी मिक्स वेजिटेबल है और दाल चावल और अचार। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज तो भाई हमारे घर में मूली की सब्जी बनी है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उनके यहाँ चना और तुअर की दाल मिक्स करके बनी है, हरा धनिया डाल के, और इसके अलावा आलू की सब्जी, और उनको महीनों में 30 दिन आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अक्टूबर की खास बात यह है कि प्रकृति भी शांत हो जाती है, ना बादल ना बिजली, नदी की धारा की तरह शांत हो जाती है। बदली हुई ऋतु का मन पर भी प्रभाव पड़ता है, उदासी और नीरसता को दूर करते हैं अक्टूबर के महीने में आने वाले उत्सव। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंच में आज दाल चावल रोटी और अचार है, ये मेरा फेवरेट खाना है। ये कितने लोगों का फेवरेट खाना है ये भी बताइएगा। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि रजा मुराद पर फिल्माया गया है ये गाना और हमारे शहर के एक मुशायरे में कई बार वो आ चुके हैं। एक श्रोता है जिनके घर पर आज दाल बाटी परोसी जा रही है, भाई मुंह में पानी आ गया। एक और श्रोता है जिनके घर में है आलू परवल की सब्जी, दही पापड़, कच्ची मिर्च और कढ़ी, ओ हो। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अपनी एक लघु कथा भेज रखी है, पर कार्यक्रम में वक्त कम है और इसलिए लघु कथा पढ़ना यहाँ संभव नहीं है। और एक श्रोता है जिनके घर में बन रही है बेसन की कढ़ी, कोथिंबीर की करी, कमल ककड़ी, भाई क्या क्या मेन्यू है, छोले भटूरे और रोटी किसी के घर का मेन्यू है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में कार्यक्रम करते हुए और यहाँ कोई दाल बाफला खा रहा है, कोई परवल और आलू की सब्जी, और ओ हो। बस अब मुझे लगता है कि अब ये खाने का मेन्यू नहीं पढ़ना चाहिए, गाने के मेन्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातों वाला मेन्यू है इनमें हो गया है मुंह में पानी। छोटी बातें।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई मजा आ गया आज के इस कार्यक्रम में, इतना सारा मेन्यू सुनकर आप लोगों को बांधे रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है, देखिए ये जो खाने पीने की बातें हैं इनको सुनकर मुंह में पानी भी आ गया और गला भी फंसने लगा, ये क्या हो रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब आप सबके घर के लंच का मेन्यू सुनकर मुझे अपने घर की रोटी सब्जी नहीं भा रही है। मजेदार है, अभी तो और मेन्यू आने वाला है क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने ये मेन्यू लिख छोड़ा है। इडली सांभर कोई खा रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही है कि मैं तो खाना बनाते बनाते आपको संदेश पोस्ट कर रही हूं और इस चक्कर में 15 मिनट का काम 1 घंटे में हो रहा है क्योंकि थोड़ा खाना बनाते हैं फिर मोबाइल उठाते हैं और उस पर कमेंट लिखना शुरू हो जाते हैं। तो भाई खाना बनाने में व्यवधान हो रहा है सुरीला सफर के जरिए। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज कढ़ी आलू की सब्जी साथ में चटनी बनी है, और एक श्रोता है जिनके घर पर मछली इलिश बनी है और आलू की सब्जी। एक श्रोता लिखते हैं कि श्राद्ध के चलते ज्यादातर घरों में खीर पूड़ी हलवा आलू की सब्जी ही मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल यही मेन्यू पोस्ट किया है, और कढ़ी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बनी है, दाल बाफला भी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बन रहा है, तो ये बड़ा ही कॉमन मेन्यू नजर आ रहा है, और राजमा चावल भी किसी किसी के घर पर बने। अब सबसे मजेदार बात तो मुझे ये लगी कि ये सारा मेन्यू सुनकर हमारे एक श्रोता ऐसे हैं जिनको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसमें क्या किया जाए। आप मेरे बारे में भी तो सोचिए जरा कि इतने सारे मेन्यू को सुनकर मुझे कितना लालच आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए कि जिस किसी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाना पसंद करते हैं। जैसे इस गाने में ये जो मोहतरमा है ये पलकों की झालर बन रही हैं।

हरजाई फिल्म का ये गाना कितने सारे श्रोताओं को पसंद है और भाई अब बहुत ही शानदार मेन्यू आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ दाल ढोकली सलाद और आम के अचार का भोजन है। एक श्रोता हैं ये लिख रही हैं कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, बहुत दिनों के बाद बेटा घर आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बनाए, हरी सब्जी तो वो कम पसंद करता है। आपने विविध भारती के श्रोताओं से मेन्यू पूछा तो मुझे लगा कि मैं इसमें से ही कुछ बना लूं, तो भुट्टे बॉईल कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भाई जब गाने प्रसारित किए जा रहे होते हैं तब आप स्टूडियो में क्या करते हैं, क्योंकि तब तो हम कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इसका जवाब यह है कि हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सत्तू की लिट्टी और चोखा बनाती हूँ क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, छुट्टियों में जब वो घर आता है तो ये बताता है। एक श्रोता है जो पतिदेव के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाती हैं, और एक श्रोता लिख रही हैं कि हर गृहिणी को अपने परिवार में अलग अलग सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं अभी फिजियोथेरेपी करवा के आई हूं और अब फूल गोभी की सब्जी और मूंग की धुली दाल बना रही हूं, लेकिन इतना सारा मेन्यू सुनकर कंफ्यूज हो गई हूं कि भाई मुझे क्या बनाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन यहां एक हैरत की बात सामने ये आई है कि खाना बनाने के बारे में सब कुछ महिलाओं ने ही लिखा है, एक भी पुरुष श्रोता ने ये नहीं लिखा कि वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाते हैं। तो भाई पुरुष श्रोताओं के लिए ये गाना

भाई इस गाने में मोहब्बत बड़े काम की चीज है और ये बेकार बेदाम की चीज है, ये इन दो बातों पर बहस हो रही है। तो चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को लगता है मोहब्बत काम की चीज है, कितनों को लगता है ये बेकार बेदाम की चीज है। लिखिए।

तो भाई हमने आपसे ये पूछा है कि कितने लोगों को लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है और कितने लोगों को लगता है काम की चीज नहीं है।

बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि तकरीबन सभी श्रोताओं ने ये कहा है कि मोहब्बत काम की ही चीज है और सुकून से जीने का सबब है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर प्यार ना हो तो जिंदगी नरक हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने मजाक करते हुए ये लिखा है कि शादी से पहले मोहब्बत काम की चीज है और शादी के बाद काम की चीज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा मेन्यू भी आ रहा है और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम में इतना कम वक्त है कि ये मेन्यू शामिल करूं कि ना करूं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव आया था और वो ये, मैंने कहा था कि भाई जो पुरुष खाना नहीं बनाते घर पर उनके लिए ये गाना और बजाया त्रिशूल का गाना, तो एक श्रोता ने सुझाव दिया कि भाई ऐसे पुरुषों के लिए होना चाहिए ये गाना। अब जरा सोचिए कि लिस्ट में तो नहीं था ये गाना, लेकिन जिन श्रोताओं को खाना बनाना नहीं आता पुरुषों को, उनके लिए तो भाई ये मैके गई वाला गाना ही सही होना चाहिए।

फिर बहुत सारे मेन्यू जो हैं। अब तमाम श्रोताओं से तो मैं यही कहूंगा कि आप आज ये जो सुरीला सफर है इसका इसके कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़िएगा, और यहां पर जो खाने का मेन्यू है ना, ऐसी लिस्ट बन जाएगी कि कई हफ्तों तक आपके घर पर अच्छा अच्छा खाना बनता ही चला जाएगा। और अब रूठने मनाने वाला गाना कार्यक्रम का तकरीबन आखिरी गाना है। हमने पूछा था आज कौन किससे रूठा हुआ है, ज्यादा लोगों के जवाब नहीं आए, यानी कोई किसी से रूठा नहीं है। भाई किसी से भी रूठिए पर विविध भारती से नहीं।

भाई रूठने की बात तो हो गई। एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा तो किचन में जाना निषिद्ध है क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं आता। अब ये पुरुष श्रोता हैं तो भाई आज ये कहकर इस कार्यक्रम से विदा लेंगे हम कि अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे तो पुरुष श्रोताओं का बनाया हुआ मेन्यू पूछेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, वरना तब तक सीख लीजिए क्योंकि

देखिए ना भाई, ये पल किस तरह से बीत गया और कार्यक्रम का वक्त एकदम खत्म हो चुका है। आप सभी के साथ बहुत आनंद आया, आप सभी श्रोताओं ने जिस तरह से कमेंट्स करके साथ दिया।

0: श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्ज्वल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर

0: रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा। इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट
1: टेपा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
3: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
4: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा

0: भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। इन डेवलपमेंट से यमन कॉन्फ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।

0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार। नाम है एक ही कलाकार। एक ही कलाकार प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आज हम सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे चेहरे को आपके बीच लेकर आए हैं जिसकी मुस्कान, जिसकी अदाकारी आज भी सबके दिल में बसी हुई है। जी हाँ, सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनकी अदाकारी सब कुछ दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो आज की हमारी जो ये कलाकार हैं, जो सितारे हैं, ये भी एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 70 के दशक के आखिरी वर्षों में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और बहुत कम समय में बड़े सितारों के साथ अपनी पहचान बनाई। अब ये सितारा कौन है ये वो तो आप गीत सुनकर पहचान ही जाएंगे, और जब आप पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अपने जवाब हमें मेल के जरिए भेजना होता है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फिलहाल आपको हम लता जी की आवाज में ये गीत सुनवा रहे हैं। पहचानिए कि आज हम कौन सा सितारा आपके लिए लेकर आए हैं।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से सदाबहार नगमे।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: शकील बदरनी के बोल रहे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में महिला को रखे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गृह सचिव वंदना दादेल अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। झालसा की जांच रिपोर्ट में महिला ने 3 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अदालत ने हिरासत के कानूनी आधार पर स्पष्टीकरण मांगा है। जमशेदपुर के नरवा पहाड़ में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL ने स्थापना के 6 दशक पूरे होने पर हीरक जयंती वर्ष मनाया। समारोह में परमाणु ऊर्जा आयोग की सदस्य वित्त सीमा जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों ने UCIL की खदानों और प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा कर यूरेनियम खनन सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन की जानकारी ली।
1: पूरे होने पर जमशेदपुर के नरवा पहाड़ में हीरक जयंती वर्ष मनाया। समारोह में परमाणु ऊर्जा आयोग की सदस्य सीमा जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस अवसर पर पत्रकार कार्यशाला और DAE की प्रदर्शन किया गया।
0: भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी इंद्र सिंह पटेल के रांची दौरे पर सत्ताधारी गठबंधन ने तंज कसा। कहा झारखंड में कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है।
2: सैंडी अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, दे ऑल आर टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी नेताओं को झारखंड की जिम्मेदारी दी है। नेता बदलने से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दा पर बात ही नहीं करते हैं।
0: खूंटी के रानी फॉल में शैक्षणिक भ्रमण पर गए तिलमी स्कूल के 18 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उल्टी, दस्त और सिरदर्द की शिकायत के बाद उन्हें कर्रा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। विधायक सुदीप गुड़िया और रामेश्वर मुंडा ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल लिया। डॉक्टर के अनुसार फूड पॉइजनिंग की आशंका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्ट इंडीज T20 मैच के लिए आज सुबह 9 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। काउंटर ते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें राज्य के कई जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए क्रिकेट प्रेमी शामिल हैं। टिकट मिलने के बाद दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
3: अमन राज बोकारो से आए, सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, सुबह 7 बजे से। एक पर्सन को 2 टिकट मिलने वाला। खाने पीने का व्यवस्था नहीं, सुबह से ही लगे हुए। अब यहाँ

0: निकलने के बाद ही कुछ करेंगे।
1: मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, हम पलामू जिला से आए हैं। लाइन में भी लगे हुए 1 घंटा मेरा है। अपने लिए भी आए हैं और घर के लिए भी लेने आए हैं। इतना भीड़ है अभी तक तो कोई उसका उम्मीद नहीं है, लेकिन देखिए अगर जल्दी वहाँ होता है तो टिकट मिल भी सकता है।
2: उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने पूजा समितियों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में सुरक्षा, यातायात, श्रद्धालुओं की सुविधा, पेयजल और प्रतिमा विसर्जन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम धीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात और प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रशासन और पुलिस ने पूजा समितियों से सुरक्षा मानकों का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की। राजमहल के उधवा झील पक्षी आश्रयणी में वन्यजीव सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों को स्थानीय और प्रवासी पक्षियों तथा उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई। उपवन परिसर पदाधिकारी अखिलेश मरांडी ने अवैध शिकार और पक्षियों को पकड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियां सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार।
2: बिल्कुल वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा लगता है।
1: सब अच्छा लगता है और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और आज हम विषय बता देते हैं, ध्यान रखा जाता है अच्छे खाने से। बिल्कुल। आज हम बताने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला और बफोरी। हमारे साथियों ने भी व्यंजन की इस व्यंजन की रेसिपी भेजकर रखी है तो हम पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल। और जब साफ सुथरा घर होता है ना तो घर में बैठना रहना कितना अच्छा लगता है।
2: बहुत अच्छा लगता है।
1: अपने पसंद के गाने सुनो, जो चाहे वो करो, अपनी पसंद की किताब पढ़ो या फिर कुछ अगर ऐसे ही कुछ नाचना है मिलके सब परिवार के साथ वो भी कर सकते हैं।
2: कहीं भी देखो, आप कहीं भी होकर के आओ, घूम फिर के आओ, आपको चाहे कितनी भी सुविधाएं मिली हो लेकिन जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो हमें स्वर्ग से कम नहीं लगता है।
1: हाँ, और एक कैसे सुकून वाली हम सांस लेते ना। हाँ, घर आ गए।
2: और आज कथा सुधा में हम अमावस की रात का भाग दो सुनवाने वाले हैं।
1: बिल्कुल। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने संदेशों में भेजा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कहानी।
2: बिल्कुल। और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सुनेंगे एक गीत।
1: बिल्कुल भाई, संवाद तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ साथ में गीतों का होना बहुत आवश्यक है।

0: मंजरी, दिल भले आज ना दे या कल ना दे, लेकिन कहानी सुनने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं कहानी
0: अमावस की रात।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। अब तक आपने सुना,
4: दीपावली की संध्या थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।
3: आइए अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
4: वही अमावस्या की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरिजा का दवा दर्पण कर सकें। क्या करें, इस निष्ठुर वैद्य को यहां कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तहार छापता, तेरी दवाइयां कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा की भांति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक एक कर दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वो कागजी पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद के अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूंड से उस अरण्य के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर

0: द्वारपालों की भांति खड़े थे। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले,
1: आपका आगमन कहां से हुआ है?
0: नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया,
2: मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है, मैं वहां का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हुआ।
0: पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले,
1: ये आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं।
0: इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी। वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को अपने पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया है। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा,
2: आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी?
0: देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले,
1: संभवतः हो, कुछ कह नहीं सकते।
0: ठाकुर ने बहुत लापरवाही से कहा,
2: ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे।
0: पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था।
1: शंका होने लगी, भाग्य हरे भाग ना दिखा रहा हो, उन जाने वो पचलकर राख हो गया या नहीं। यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है? शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वो पत्र मिल जाए, वो पत्र मिल जाए, हमने अनेक कष्ट सहे हैं, अब हम पर दया करो, अब हम पर दया करो।
0: इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूदे, तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले,
1: प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो अब तो बच जाएगी गिरजा, अब तो बच जाएगी।
0: उन्मत्तता में उन्हें ये एकदम नहीं जान पड़ा कि गिरजा है, केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए, परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
1: लीजिए, वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए।
0: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि यह संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
2: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
0: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से एक एक हजार के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

0: वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतःपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेट कर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है। जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा कैसी तबीयत।
0: किंतु जब गिरिजा तनिक भी ना मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
1: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है, ये सौदा बड़ा महंगा।

0: अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं। पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त, नंगे सिर नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हांक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी ये 75,000 के नोट है, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आके खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर निछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। इन रुपयों से कई गुना प्यारी
0: है। वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
0: ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर, ठाकुर नवयुवक, दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सहेली और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत जरूरी शिक्षक है ना, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना, जिसे कहते हैं ना संवाद करना, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं, अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाई को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूँ, मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं, उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल, कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जो टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हैं और हर बच्चे वही समझे। आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है, इसको किस भाषा में, सरल भाषा में समझ में आता है, कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है, तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही इस बात का आ गया एक संदेश के द्वारा। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है, जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञान वर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई है, जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात
0: बहुत अच्छे से बताया। और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत जरूरी, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है, न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती
1: है
0: जो हम नहीं बोल पाते।
1: बिल्कुल।
0: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नजदीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते।
1: बिल्कुल। और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है, संकोची होते हैं, याद नहीं हुआ, तो वो पीछे बैठ जाते हैं जाकर के। और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि तुम
0: नजर
1: पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं। कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। ये संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
0: बिल्कुल। जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की, जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी निडर वाली हो जाए ना, तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयां साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
1: कभी
0: बताएंगे नहीं, चुप ही रहेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बता क्या उनकी प्रॉब्लम।

0: को सॉल्व करो, या किस तरह उन्हें बोले या बताए कि समझाए।
1: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए,
0: कभी कभी डरते भी बच्चे सबके सामने बोलने।
1: तो जो हम जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है, आपसी विश्वास बढ़ता है, समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है, मानसिक तनाव में कमी आ जाती है, प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं, उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं।
1: हाँ, आगे काम आएंगे,
0: काम आएंगे, है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, तो नहीं हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
1: और देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन में बढ़ने की राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं ना। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं
0: है, और संगीत से बड़ा भी कोई शिक्षक नहीं
1: जी।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है, वो चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले।
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है, है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं हिलेंगे।
1: तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे, हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा ना होने दें, जो चीज लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
0: बिल्कुल सही कहा, और घर में हर सामान की एक निश्चित होनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद चीज को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है, और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताजी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
1: बिल्कुल, और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंक गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें। बाथरूम की सफाई को टाले नहीं, गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें, खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है। और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
0: बिल्कुल, और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते
1: बिल्कुल,
0: हैं ना?
1: बिल्कुल।
0: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर घर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होते हैं सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो स्विच बोर्ड सबकी उंगलियों के
1: निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया,
0: करना बहुत जरूरी है।
1: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों, कपूर या हल्की प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
0: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही ये भी साफ कर दो ये भी साफ कर दो, नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होते हैं उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे, अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह से घर के जो हमारे श्रोता भाई हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर के महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो आप आकर हमें डांट सकते हैं
1: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। अरे हमारे साथी और लिखते हैं कि सुकून भरे स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थान हो, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ये लिखते हैं, और स्वच्छता जहाँ होती वहाँ पे बरकत होती। बहुत सही बात कहा है, हमें घर के साथ साथ जो चीजें आपने लिखी जहाँ जहाँ के बारे में उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य के मुझे साफ रखें।
0: बिल्कुल। अच्छा एक और संदेश ये कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहाँ शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है, जहाँ धूल नहीं होती वहाँ बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है, और जहाँ हर चीज अपनी जगह पर है वहाँ विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आंखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है, और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ सारी बात

0: एक उसमें डाल
1: संदेश
0: दी
1: में समा गई है।
0: बिल्कुल हम एक साथ ही लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्रि में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है। अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है, तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है।
1: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है, फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो, तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
0: भाई देखो,
1: बिल्कुल
0: घर
1: सही
0: भी
1: कहा।
0: सुंदर हो, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं तो वो घर और भी सुंदर लगेगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है तो वहां कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं बल्कि जीवन की उलझनों को बुहार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहाँ पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहाँ हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और बुहार कर जो शब्द आया है ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है, तो बड़ा अच्छा लग रहा
1: अच्छा लग
0: है
1: रहा है। अच्छा,
0: ना।
1: एक शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, इन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेजों की जांच करें, रैपर है, रसीदे हैं या कप वहां पड़े रहते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में भी सुबह की चाय हो ही जाती है, वो सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें। दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने की से जगह जो है वो ताजा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब
0: कई
1: अगर आप ऑफिस पे हैं
0: जी
1: या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपका सिटिंग जॉब है, तो ये बीच बीच में 2-2 मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ, ये ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं।
0: और
1: देखिए
0: कई बार
1: कितना
0: तो
1: अच्छा
0: क्या होता
1: लगता
0: है
1: है।
0: कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पे आपने कोने में सामान रखा है, लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर
1: डाइनिंग
0: कर
1: टेबल
0: देता
1: तो ऐसा लगता है
0: है ना,
1: शायद हर घर में डाइनिंग टेबल शायद
0: कोना
1: सामान
0: भरे रहते जमाने के लिए,
1: के लिए
0: क्योंकि
1: ही।
0: लगता है ये चीज भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी ले लेंगे, नमक भी
1: बिल्कुल
0: ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे,
1: सही कहा।
0: अरे वही इसको थोड़ा किनारे रखो,
1: भले आप
0: है
1: रखिए
0: ना।
1: उस पे सामान, लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है, डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बेशक खाइए, लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसा सामान उठा करके ला के जो
0: अलमारी ना
1: बाजार से
0: बनाइए।
1: बिल्कुल
0: चलो एक गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है। अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी को भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में, खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
3: हमने साफ सुथरा हाँ, कर लिया, सब
4: तो खाना भी तो पका ले,
3: तो बहुत भूख लगी
4: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
3: और बताइएगा हाँ, कैसा लगा।
4: तो हमारे एक साथी ने भेजा है चौसेला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खासतौर से त्योहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए, तलने के लिए वो अंदाज से ले लीजिए, गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार, चौसेला का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हथेलियों से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं, और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं, और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें, और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
3: बिल्कुल। और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिली जुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियां 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी आधी छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए, और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकालकर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पीसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चुपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें, इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें। इसे ढक कर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आँच पर भाप में पकाना है, और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें। इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
4: स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना,
3: बनाने वाली हूँ। तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली
4: हूँ।

0: तो दीपा तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
1: गा के नहीं भाई, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
0: अच्छा,
1: तो सुनाएंगे गाना?
0: चीटिंग करी है तुमने।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं कही है। और देखो हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन
0: घड़ी नहीं करने देगी, है ना?
1: नहीं करने देगी, वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
0: चलो हम दोनों बहने निकलो, चलो। तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और
1: जी
0: दीपा मंजरी का नमस्कार बोलो,
1: और मंजरी का नमस्कार।
0: चलो ठीक है, ओके।

0: महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
1: जी।
0: और वो समय है मेनोपॉज का। क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या।
1: जी, जैसे ये वर्ड बताता है मेनोपॉज, मेनो यानी पीरियड, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए, जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज की, एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे खत्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरी मेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है, और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
0: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
1: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 45 to 50 ईयर्स है, उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
0: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
1: जी जी,
0: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको भी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
1: जी,
0: तो नहीं होता
1: जी,
0: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती है।
1: यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
0: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
1: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
0: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
1: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब लेट होता है पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मींस बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
0: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत जरूरी है।
1: यस,
0: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा। एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
1: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: तो जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज, जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पांव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम, ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन, जैसे जब आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमोटर सिम्टम्स हैं। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: अरे, जी, अच्छा।
1: जी, तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है। आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज को नजरअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफी टाइम हम देखते हैं व्हील चेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन हैं, वो इस चीज को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफी हद तक, काफी एज तक 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
0: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा।
1: जी डेफिनेटली
0: ध्यान रखना होगा। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने महावारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है, और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है,
1: जी,
0: तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव है, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे?
1: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अर गायनेक ही दे सकते हैं। आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज का इंपॉर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं। और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
0: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम कि थेरेपी होती भी है कि नहीं।
1: जी जी जी।
0: तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है।
1: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए।
0: जी तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए,
0: क्या बात है। लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं, गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
1: आशा भोसले
0: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है। आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वजन बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मींस आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करे,
0: डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें, जो बहुत मेहनत करती हैं, हार्ड तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती
0: है।
1: जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस और मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोस्फियर, जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
0: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं। जी, डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर।
1: जी, जी,
0: तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं, और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
1: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है, ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुली ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे का देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नजरअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
0: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है।
1: जी,
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वहीं खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा।
1: यस, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात। और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
1: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं
0: होती। अच्छा,
1: एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है
0: जी,
1: जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती है,
0: महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
1: जी, तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है, तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
0: चाहिए जी। यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
1: इज फाइन
0: रूटीन चेकअप होना चाहिए जी। तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो, ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
1: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
0: दूर रहना
1: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें। होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन की डेफिशिएंसी काफी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं?
0: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे, और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे।
1: यस,
0: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे,
1: यस, और फिर सो जाते थे थक के, यस,
0: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था,
1: जी जी,
0: और घर का बना हुआ खाना, उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं,
1: जी जी बिल्कुल,
0: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है
1: जी।
0: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए, सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को देखें।
1: यस, तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है
0: जी।
1: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात, आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है।
1: बहुत, काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे यू नो कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को। इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और खुद भी वो फॉलो करना है। एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहाँ एक घंटा निकल गया पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
0: बिल्कुल आपने कहा, और कुछ नहीं बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
1: जी
0: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: There are so many कि तू रूठा तो मैं रोऊंगी सनम,
0: ये गाना सुनना चाहती हैं फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोंसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल नावाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी।
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली, वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इश्यू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता
0: है। जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है, IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन दे के ज्यादा अंडा जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी। तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
1: तो सबको तो नहीं होती है। कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया। इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
0: अच्छा।
1: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक ये
0: दूर कर दी
1: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और दूसरे एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपॉजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करते हैं, बस खाली उतना
0: फैसिलिटी।
1: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है।
0: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
1: पहले तो
0: करता है?
1: यस, ये पहले सब टेस्ट होती हैं। तो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं है, ये नहीं है जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है। काफी हद तक है, उससे 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम,
0: ये समस्या होती है। और ये तो
1: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है।
0: लेकिन
1: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में, तो बहुत ही डिफिकल्ट,
0: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा मतलब बुरा सुनना पड़ता है, जिसका दुख होता है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं।
1: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हुज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय।
0: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
1: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म,
0: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिले, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब आईवीएफ ऐसा नहीं है कि आईवीएफ करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: Yes.
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और दंपति

0: में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करे जो भी इश्यूज हैं, उसको
0: डॉक्टर के सामने
1: सामने रखें और फिर उससे डील करें। क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि, और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
0: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए,
1: नहीं आना चाहिए।
0: जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
1: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टेन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जहां पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टेन टेस्ट करते हैं, तो काफी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत जरूरी है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: छाया की
1: साथ मैं कामिनी रांची में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 5 गोल्ड मेडल समेत 207 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। रांची के मोरहाबादी में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड की 9 जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के लिए 9 अक्टूबर को भाषा मार्च निकाला जाएगा। इसमें विभिन्न जनजातीय भाषाओं से जुड़े छात्र और प्रतिनिधि पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दी जाने पर आंदोलन को विश्वविद्यालय स्तर तक ले जाया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक मनीष जैन ने सोमवार को टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बर्मा माइंस छोर पर चल रहे स्टेशन विस्तार, 4-लेन सड़क पार्किंग और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। रामगढ़ कॉलेज में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 महाविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुलपति प्रोफेसर डॉ. चंद्रभूषण शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल को भी जरूरी बताया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में पुलिस ने संगठित अपराध और कथित अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए कदीम खान से जुड़े बताए जा रहे ठिकानों की जांच शुरू की है। पुलिस ने किरायेदारों को खाली कराया और उनके सत्यापन की तैयारी शुरू की। साथ ही कदीम खान की पत्नी डॉली परवीन से जुड़ी बताई जा रही संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम

0: धरती कि दोनों आते हैं एक दूसरे के करीब, इतने करीब जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को, जैसे वो बने हों एक दूसरे के लिए।
1: मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया।

जुल्मतों और बेदर्दी वाली ये दुनिया, यहां लगती हैं ठोकरें, यहां टूटता है भरोसा, यहां रोशनी के सागर में मिलता है अंधेरा, और कभी कभी लगता है कि सचमुच इस दुनिया में है कोई कोना जो हमारा अपना हो, जहां हम सुकून से जी सकें।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना। हम अभी हाजिर हुए।

बारिश सिर्फ आसमान की मुंडेर से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमेशा बादल अपना बटुआ खोलें और लुटाते रहें बूंदों की अशर्फियां हमारी धरती पर। कोई कोई बारिश मन के अंदर होती है और सुलग सुलग जाता है मन।

उदास है दिल, उदास दिल गा रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:30 से आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। चर्चा होगी गेहूं की खेती की वैज्ञानिक तकनीक, आज की बात में चना की उन्नत किस्में एवं खेती। भेंटवार्ता आप सुनेंगे बागवानी फसल की देखरेख पर, भेंटवार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ पलामू, भेंटकर्ता हैं संतोष कुमार। ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी शाम 6:30 से। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर, साथ ही चर्चा में सुनेगा सरसों की खेती की तैयारी। भेंटवार्ता आप सुनेंगे कृषि वानिकी पर, भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल कुमार, कृषि विशेषज्ञ भेंटकर्ता हैं संतोष कुमार। आज की नसीहत में गेहूं में कीट प्रबंधन, आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा बुनियाद। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 7:45 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय है मनोविक्षिप्तता, कारण एवं बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार, मनोचिकित्सक पलामू। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नई सोच नया कदम। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज के फनकार। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम महिला बहनों को राखी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम घर आंगन में। बहनों, आज हम बातें करेंगे विश्व शिक्षक दिवस की। हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले रूप में सबसे ऊपर है। इनका मार्गदर्शन शिक्षक हमें सही और गलत का अंतर सिखाते हैं और जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाते हैं। वे छात्रों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे गुण को विकसित करते हैं। शिक्षक बच्चों की छिपी हुई क्षमताओं को पहचानकर उनका आत्मविश्वास मजबूत करते हैं और एक अच्छा शिक्षक ही सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करके देश की प्रगति में अहम योगदान देता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। तो बहनों, आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता आपको सुनवाते हैं। विषय है मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव सभ्यता का नया अध्याय। प्रस्तावना। मानव जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने जीवन को सरल, सुरक्षित और उन्नत बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। कभी पत्थरों के औजारों का निर्माण हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे महान आविष्कारों ने संसार को बदल दिया। आज मानव जिस युग में जी रहा है वह तकनीक और डिजिटल क्रांति का युग है। इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और चर्चित तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मानव सोच का विस्तार है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। आज AI ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, व्यापार, न्याय, सुरक्षा, बैंकिंग, परिवहन, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में AI का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोग AI को मानव जीवन के लिए वरदान मानते हैं क्योंकि इसने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वहीं कुछ लोग इसे चुनौती और खतरे के रूप में देखते हैं।

कि यह मानव रोजगार गोपनीयता और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए एआई के लाभ और हानि दोनों समझना अत्यंत आवश्यक है। आज संसार डिजिटल युग से आगे बढ़ एआई युग में प्रवेश कर चुका है। आने वाला समय में यह तकनीक मानव जीवन को और अधिक प्रभावित करेगा, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम एआई को केवल तकनीक के रूप में न देखें, बल्कि उसे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को भी समझें। एआई क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित, और इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता अर्थात ऐसी कृत्रिम प्रणाली जो बुद्धिमानी से कार्य कर सके, और उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब मशीनें मानव की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने लगें तो ये उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। एआई का उद्देश्य ऐसी मशीनों और कंप्यूटर प्रणालियों का निर्माण करना है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य कर सके। ये मशीनें अनुभवों से सीखती है, डेटा का विश्लेषण करती है और समय के साथ अपने कार्यों में सुधार करती जाती है। उदाहरण के रूप में मोबाइल का वॉइस असिस्टेंट, गूगल मैप, ऑनलाइन चैटबोट, स्वचालित कारें, रोबोट, मेडिकल जांच प्रणाली, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि एआई के उदाहरण हैं। एआई का इतिहास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार नया नहीं है। प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसी मशीनों की कल्पना करता था जो स्वयं कार्य कर सके, परंतु आधुनिक एआई की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। प्रारंभिक विकास 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन टूरिंग ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती है। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं। 1956 में अमेरिका के डॉर्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों के निर्माण पर कार्य शुरू किया जो स्वयं सीख सके। आधुनिक युग में एआई, इंटरनेट, बड़े डेटा, तेज कंप्यूटर और मशीनी लर्निंग तकनीक के विकास में एआई को नई गति दी। आज एआई केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के मोबाइल फोन और दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एआई के प्रमुख प्रकार। नैरो एआई, सीमित एआई। इसे केवल विशेष कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, चैटबोट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। आज अधिकांश एआई इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जनरल एआई, तीसरा सुपर एआई। जनरल एआई यह ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मानव की हर तरह हर प्रकार का कार्य कर सके। वर्तमान में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। सुपर एआई यह भविष्य की कल्पना है जिसमें मशीनें मानव से भी अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं। इस विषय पर वैज्ञानिक और दार्शनिक लगातार चर्चा कर रहे हैं। एआई वर्तमान समय में कैसे उपयोग हो रहा है? आज एआई का उपयोग संसार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने क्रांति ला दी है। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम, भाषा अनुवाद परीक्षा प्रणाली इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई, चिकित्सा विज्ञान एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, जैसे रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी, दवा निर्माण, स्वास्थ्य निगरानी इत्यादि। न्याय और कानून के क्षेत्र में एआई, आज एआई कानून और न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, न्यायिक विश्लेषण इत्यादि।
कृषि के क्षेत्र में AI। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में AI किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जैसे मौसम की जानकारी, फसल रोग पहचान, स्मार्ट सिंचाई इत्यादि। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में AI व्यापारिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली बन चुका है, जैसे ग्राहक सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग, उत्पादन प्रणाली इत्यादि। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आज बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। ऑनलाइन लेन देन सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, निवेश विश्लेषण इत्यादि। परिवहन और सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, ड्राइवरलेस कार, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में AI मनोरंजन उद्योग में भी क्रांति ला रहा है। फोटो और वीडियो एडिटिंग, संगीत निर्माण, फिल्म विशेष प्रभाव, सोशल मीडिया, YouTube सुझाव प्रणाली, ये सब AI के माध्यम से संचालित होते रहे हैं। मानव जीवन पर AI का सकारात्मक प्रभाव, समय की बचत, कार्य की सटीकता, जीवन को सरल बनाना, नई खोज का विकास, दिव्यांग लोगों के लिए सहायता। AI के नकारात्मक प्रभाव, AI के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे बेरोजगारी, मानसिक निर्भरता, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट, मानवीय संवेदनाओं की कमी। AI और नैतिक चुनौतियाँ, AI के विकास के साथ कई नैतिक प्रश्न भी उठ रहे हैं। क्या मशीनें मानव पर शासन करेंगी? क्या AI मानव स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? क्या AI का दुरुपयोग युद्ध और अपराध में होगा? क्या मशीनें मानव निर्णय को नियंत्रित करेंगी? इन प्रश्नों का समाधान केवल तकनीक से नहीं बल्कि नैतिकता और कानून से संभव है। AI और रोजगार, यह सत्य है कि कुछ पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, परंतु AI नए रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, AI ट्रेनर, डिजिटल विश्लेषक। इसलिए आवश्यक है कि लोग नई तकनीकी सीखें और स्वयं को आधुनिक युग के अनुसार विकसित करें। भारत में AI का विकास, भारत तेजी से AI तकनीकी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान, स्मार्ट सिटी परियोजना, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों में AI का उपयोग बढ़ रहा है। भारत के युग AI के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। क्या AI मानव का स्थान ले सकता है? यह प्रश्न आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। AI मानव की तरह गणना और विश्लेषण कर सकता है, परंतु प्रेम, करुणा, संवेदना, नैतिकता, रचनात्मकता जैसी मानवीय विशेषताओं का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता। मशीनें आदेश का पालन कर सकती हैं, लेकिन मानव हृदय की भावनाओं को नहीं समझ सकती। इसीलिए AI मानव का सहयोगी हो सकता है, विकल्प नहीं। भविष्य में AI की भूमिका, भविष्य में AI और अधिक शक्तिशाली होगा। स्मार्ट शहर, रोबोटिक अस्पताल, स्वचालित वाहन, डिजिटल न्यायालय, वर्चुअल शिक्षक, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्र में पूरी तरह AI आधारित हो सकते हैं। यदि AI का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह विश्व की नई दिशा दे सकता है। AI और मानवता, तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। यदि AI का उपयोग केवल लाभ और शक्ति के लिए किया जाएगा तो यह समाज में असमानता और संकट पैदा कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता के की सेवा करे। निष्कर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। इसने मानव जीवन को नई गति, नई दिशा और नई संभावनाएं दी है। आज AI शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन ला रहा है। आज

AI मानव जीवन को सरल और आधुनिक बना रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग से सावधान रहना भी आवश्यक है। बेरोजगारी, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट और नैतिक चुनौतियां इसके नकारात्मक पक्ष हैं। इसीलिए आवश्यकता है इस बात की कि मानव विवेक, नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ AI का उपयोग करें। अंत में यही कहा जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव की बुद्धि का विस्तार है, उसका प्रतिस्थापन नहीं। यदि मानव सही दिशा में AI का उपयोग करे तो आने वाला भविष्य ज्ञान, विकास, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है।

0: बहनों, अभी आप सुन रही थी जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता, मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और अब बात करते हैं लड़कियों के व्यक्तित्व विकास में माँ की क्या भूमिका होती है। बहनों, माँ बेटी की पहली गुरु और सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होती है। बेटी के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संस्कार और सोच के विकास में माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास माँ बढ़ा सकती है। बेटी को अपनी बात खुलकर कहने और अपने निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पढ़ाई के साथ नई चीज़ें सीखने और अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर देना। ईमानदारी, अनुशासन, दया, सम्मान और जिम्मेदारी से मूल्यों को माँ ही व्यवहार के माध्यम से सिखा सकती है।
1: और बेटी की बात ध्यान से सुनना और उसकी भावनाओं को भी संवाद के माध्यम से समझा जा सकता है। और दैनिक जीवन के छोटे छोटे निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने के लिए भी प्रोत्साहित करना होता है। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखने की भावना पैदा करना और बेटी को यह विश्वास दिलाना है कि वह भी अपने सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता रखती है। माँ का व्यवहार, आत्मविश्वास और संघर्ष करने का तरीका बेटी के लिए सबसे प्रभावी सीख होता है। माँ का प्रेम, विश्वास, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बेटी को आत्मविश्वासी, संवेदनशील, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है।
0: बहनों, अभी हम बात कर रहे थे लड़कियों के व्यक्तित्व विकास में माँ की क्या भूमिका होती है। आइए आपको सुनवाते हैं गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 5 गोल्ड मेडल समेत 207 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। चतरा कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग में विश्व शिक्षक दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। सत्र 2025 से 27 और सत्र 2026 से 28 के प्रशिक्षुओं ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। विभागाध्यक्ष डॉ. नंद किशोर सिंह ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि आपके आचरण और संस्कारों से विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करते हैं। पाकुड़ के रविंद्र भवन में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को स्टार्टअप शुरू करने, नवाचार, प्रशिक्षण, मेंटरशिप, वित्तीय सहयोग और बाजार से जुड़ाव की जानकारी दी गई। चतरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तेजस्विनी युवती सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में छात्राओं को आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जागरूकता के प्रति प्रेरित किया गया। महिला थाना प्रभारी सुषमा कुजूर ने महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में पूजा समितियों को स्वयंसेवक पहचान पत्र, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के पिपरा दामर जंगल में एक जंगली हाथी मृत मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। डीएफओ एवन बेनी हेम्ब्रम ने बताया अब्राहम ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीणों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और किसान भाइयों आपको ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गेहूं की खेती की वैज्ञानिक तकनीक पर। रबी मौसम की प्रमुख फसल गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक हर चरण में वैज्ञानिक तरीके अपनाना जरूरी है। गेहूं की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करें, भूमि की तैयारी ही जरूरी है सबसे पहले, तो इसी की बात कर लें। मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी चाहिए। मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्नत बीज का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। अपने क्षेत्र और जलवायु के अनुकूल प्रमाणित और रोगरोधी किस्म के स्वस्थ बीज का चयन करें। समय पर बुआई करने से फसल की अच्छी पैदावार और बेहतर उत्पादन मदद मिलती है।
0: और गेहूं की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ग्रामीण भाइयों, मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें, आवश्यकता से अधिक खाद का प्रयोग न करें। गेहूं में पानी की जरूरत फसल की अवस्था और मौसम पर निर्भर करती है। विशेष रूप से शुरुआती महत्वपूर्ण अवस्था में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी होता है। खेत में पानी जमा न होने दें। खेत की नियमित निगरानी करें। खरपतवार दिखाई देने पर समय रहते उचित नियंत्रण कर उपाय अपनाएं और कीट या रोग दिखाई देने पर पहले उसे सही पहचान करें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा का प्रयोग करें। और जहां संभव हो जीरो टिलेज जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे समय, पानी और खेती की लागत को कम करने में सहायता मिल सकती है।

0: बीज उपचार ही बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बीज से फैलने वाले कई रोगों से बचाव में मदद मिलती है। बीज उपचार के लिए अपने क्षेत्र में अनुशंसित विधि और कृषि विशेषज्ञ की सलाह अपनाएं। गेहूं की फसल में सिंचाई का विशेष महत्व है। फसल की अवस्था, मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। जरूरत से ज़्यादा पानी देने से बचें के साथ ही खेत में खरपतवार, कीट और रोगों की नियमित निगरानी करते रहें। समस्या दिखाई देने पर पहले उसकी जाँच करें और फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित निरंतर उपाय करें। और इसकी उन्नत किस्में हैं करण नरेंद्र DW 222, करण वंदना DBW 187 या कम पानी में पकने वाली किस्में आप चुन सकते हैं। समय पर बुआई के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। फफूंदनाशक जैसे बीजों का उपचार जरूर करें ताकि कवक जनित रोगों से बचाव हो सके। बुआई के समय DAP 35 से 50 किलो प्रति एकड़, पोटास 25 से 30 किलो प्रति एकड़ और सल्फर का उपयोग करें। जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट का उपयोग मिट्टी या पहली सिंचाई के समय करें। बुआई का तरीका और समय हम आपको बता देते हैं। नवंबर का महीना सिंचित गेहूं की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सीड ड्रिल मशीन से बुआई करें जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कृषक भाइयों, अभी हम बात कर रहे थे गेहूं की खेती की वैज्ञानिक तकनीकी और अब आपको भेंटवार्ता सुनवाते हैं कृषि विषय के पलामू के देव कुमार पांडे जी की। भेंटवार्ता का विषय है बागवानी फसल की देखरेख और बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी, जिनसे आज हम बातें करेंगे कि अभी वर्तमान समय में हमारे किसान भाई बागवानों की देख रेख किस प्रकार करें। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
1: अभी बागवानी देख रेख हमारे किसान भाई कैसे करें?
2: अभी बागवानी का देखभाल के लिए सबसे क्रूशियल पीरियड है जो हम लोगों का बरसात खत्म होता है, उसके बाद जो हम लोग देखभाल करेंगे यही सारा आगे के लिए जो कैसे फ्रूट्स मिलेगा, कैसा हमारा उसका स्वस्थ रहेगा, ये सारा सिस्टम आप अभी के समय से ही किसानों को देखभाल करनी होती है। जो भी पहले की गलती हुई है उस गलतियों को सुधारने का भी यह समय है। जैसे जो किसान भाई देखे होंगे कि जमीन जो समतल कहीं नहीं रह गया

0: है, पानी कहीं जम जा रहा है, उसको ठीक कर लेना है, अभी उचित प्रकार का नाली का तैयारी कर लेना है कि गर्मी के दिन में यदि पानी हमको देना हो तो दिक्कत नहीं हो, कहीं एक जगह पानी नहीं जमे, तो भूमि का हम लोगों को देख रेख कर लेना है। अच्छा। दूसरा एक चीज़ है कि कभी कभी होता है कि हम देख रहे हैं कि ज़मीन में उपजाऊपन कम ही हो गया है, तो उपजाऊपन कम हो गया है और सघन बागवानी आपकी नहीं है, नई नई बागवानी है, तो वैसी स्थिति में किसान भाई ढैचा सनय जैसे हरित खाद का भी प्रयोग करके और खेत में जुताई करके भी छोड़ दे सकते हैं, जो कि दो तीन काम करेगा। एक तो खेत की जुताई भी हो गई, कभी पानी यदि अभी के समय में हो जाएगा तो जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी खेत की सनय वगैरह का यूज करने से। दूसरा क्या है कि जो ऑर्गेनिक है कंटेंट उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जो ह्यूमस हम लोग कहते हैं जिससे कि पानी का धूप निकलने पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वातावरण में क्षय होने लगता है, वो वाष्पीकरण के द्वारा क्षय भी कम होगा। तीसरा चीज़ है कि अभी के समय में है कि किसान भाई जो उसका सालों भर का रिक्वायरमेंट है जो फर्टिलाइजर देने का चाहे कंपोस्ट देने का, तो ये सबसे बेस्ट समय है। या तो अभी के समय में वो पूरा डोज दे दे, या उनके पास सुविधा हो पानी की तो अभी आधा डोज देंगे और मार्च के समय में आधा डोज दे देना चाहिए।
1: अच्छा, जैसे इधर हमारे किसान भाई लोग अमरूद वगैरह ज़्यादा लगाते हैं।
0: अमरूद देखिए, अमरूद जहाँ पे लग रहा है तो खेत की सफाई, जैसे अब उसमें अमरूद में खासकर क्या होता है कि फल में झड़न शुरू हो जाता है, या आपका ये होगा कि फल में रोग लगना शुरू हो जाता है, तो बाग की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फूल उन लोग का आ रहा होगा तो फूल, जैसे फूल अभी बरसात के समय में जो उनका फूल आया होगा, जो कि अब नवंबर दिसंबर के समय में उनका फल तैयार होगा, तो वैसे स्थिति में उनको देखना होगा कि जो सूखी पत्ती है, सूखी पत्ती नहीं रह पाए नीचे में, जिस तरीका का, जैसे कुछ नहीं किसान भाई तो ये कर सकते हैं कि हल्की हल्की कोड़ाई करके और बोर्डो मिक्सचर कुछ नहीं है, एक तुतिया बाजार में मिलती है, तुतिया 7 ग्राम तुतिया ले लेंगे, 7 ग्राम चूना पाउडर और एक लीटर पानी में मिला करके इसी के मात्रा से एक घोल तैयार कर लेंगे, और उस घोल से कम 3 फुट ऊपर में जो तना है उसमें और नीचे भी जो जमीन से सटा हुआ है उससे भी कम से कम 4-5 इंच दूर तक पुताई कर देंगे, जहाँ थाला बना हुआ है तो पुताई कर देंगे। उससे क्या होता है कि जो कीड़ा ऊपर चढ़ते हैं या किसी भी तरीका का, वो ख़त्म होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब उनको देखें कि यदि किसी लोगों में पहले बार फ्रूट्स में कीड़ा लगने की समस्या हो, तो वो इसके तौर पे और क्या कर सकते हैं कि पानी मिला करके, पानी में जो है क्लोरपाइरीफॉस 1 लीटर में 1.5 ml क्लोरपाइरीफॉस मिला करके तना के नीचे पटा सकते हैं, और अगल बगल जो भी घास वगैरह है यदि है उसको साफ कर दे रहे हैं, साफ करने के बाद भी उसके ऊपर जो है क्लोरोपाइरीफॉस की छिड़काव कर देंगे, कहीं घास हो जहां कीड़े के छिपने के स्थान हो उस पे भी इस दवा का छिड़काव कर देंगे, कम से कम एक डोज इसका करेंगे, दूसरा डोज जो है मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। उसका भी 1.5 ml रख सकते, 1.5 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देंगे, तो कीड़े की जो समस्या है फल में वो खत्म हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ देखता हूँ, क्या होता है कि फल जब लगता है, फल जब भारी होता है तो तना टूट जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो तना टूटने के पीछे आप ध्यान देंगे श्रोता बंधु, तो देखेंगे कि बीच बीच में कहीं है तना में छेद उनको दिखेगा।
1: अच्छा।
0: और तना में छेद दिखेगा और उनका जो लकड़ी जिस तरीका से चिरान होता है उस टाइप से उनका बीच में
1: टूट जाता है,
0: दिखेगा कि वो कीड़े का एक तरीका का मल है।
1: अच्छा।
0: और वो मल होता है तो किसान भाइयों को उस चीज को भी देखना है, और वो ऐसे जगह पे स्थान बनाते हैं,
1: मिट्टी तरह का जो हो जाता है,
0: मिट्टी जैसा होगा, रेघा जैसा होगा, वो लसलसा टाइप का में मिला हुआ रहता है, तो किसान वो ऐसे जगह पे छेद रहता है कि आसानी से आपका नजर नहीं जाएगा, और खासकर वो ऐसे जहाँ से नई कंसी निकलती है, जहाँ से नया तना निकलता है।

0: है
1: उस जगह
0: पे, उस जगह पे होता है। तो उस जगह को किसान भाई साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद एक लीटर या जो उनकी जरूरत हो, आधा लीटर जैसा भी हो पेट्रोल हो, लेकिन एक लीटर पेट्रोल में 2 ml डाइक्लोरभॉस
1: मिला करके
0: और घोल तैयार कर लेंगे, और उसको उसको फरास बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, फरास बोलते हैं, उसको झाड़ करके हटा देंगे। हटाने के बाद जो है एक स्पॉक या थोड़ा हार्ड टाइप का स्पॉक के, साइकिल का स्पॉक होता है, उसके टाइप का रड लेकर के, तार लेकर के उसमें भीतर
1: जो हॉल बना
0: पूरा पूरा इस तरीका से घुमाएंगे कि जो उसके अंडे बच्चे हों वो उनका अस्तित्व न रहे, और रुई में ये डाइक्लोरभॉस और पेट्रोल के मिक्सचर को मिला करके भीतर घोंसे देंगे।
1: अच्छा,
0: और घोंसाने के बाद चिकनी मिट्टी का एक लेई बना करके रखेंगे, उससे जो है
1: लेप लगा
0: उस छेद को बंद कर देंगे।
1: अच्छा,
0: तो यदि इसका यदि उपचार नहीं करते हैं किसान भाई तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होता
1: दिक्कत
0: है
1: हो जाएगी। हाँ।
0: और वैसे जो यहाँ पे नया बाग हो उसमें भी यदि समस्या देखने के लिए मिल रही हो तो चूंकि वैसी स्थिति में किसान भाई कम से कम 2 बार क्लोरपाइरीफॉस का 15-15 दिन के अंतराल पे और 1 बार मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पूरे बागवानी में कर देंगे जो नया बगीचा लगा रहे हैं। हाँ, उनके लिए मेरा सलाह है, खासकर आंवला का भी जो बगीचा लगा रहे हो, जो आम का भी हो, नया बगीचा में छिड़काव कर देंगे तो वो रोगाणु मुक्त क्षेत्र रहेगा। और इसमें टोटल जो है किसान भाइयों को जो क्रूशियल पीरियड है अक्टूबर का महीना है, यही महीना में जो है उनका प्रजनन की क्रिया तेजी से होती है, अंडा वगैरह का प्रकोप होता है, तो इस समय में यदि हम लोग कर लेंगे और अभी यदि हम इसका उपचार नहीं करेंगे तो फल अभी देखने को नहीं मिलेगा, इसका परिणाम आपको मई महीने में देखने को मिलेगा। और मई महीने में कंट्रोल करना, आपको लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, धूप का भी समय होता है, दवा का जो इफिकेसी होता है मैंने उसका प्रभाव जो होता है वो उतना प्रभाव ही नहीं रह पाता है। तो ये महीना आपको दिखे या ना दिखे, आप कम से कम छिड़काव कर दीजिए और जहाँ पे दिखे वहाँ डाइक्लोरभॉस का छेद में घुसा करके लेप करें
1: जी। और इसके बाद क्या और सावधानियाँ बरत सकते हैं किसान?
0: किसान भाई को जहाँ तक सावधानी की बात है, सबसे पहला संभव हो तो कभी कभी आप देखें कि बगीचे में पहले का कोई पेड़ पौधा है वो खूंटी जैसा करके छोड़ देते हैं और वो बढ़ते चला जाता है, और बाद में क्या होता है उसका आप देखेंगे कि उसका बीज और जगह बगीचा में गिर करके पूरे बगीचा को खराब कर देता है।
1: हाँ।
0: और आने वाले समय में 10-15 वर्ष में आपका जो मुख्य पौधा है वो मर जाएगा और जो झाड़ी टाइप का पौधा है वो रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा ध्यान देना है कि काट के ऊपर से काट को नहीं छोड़ें, उसका जड़ को कम से कम जरूर हटाएं। आने जाने के लिए जो भी कहीं पे जैसे सूखा तना वगैरह दिख रहा है, न्यूट्रिएंट्स की कमी दिख रही है किन्हीं को, तो न्यूट्रिएंट्स की खान पान की कमी दिख रही है तो इमीडिएट एक वीडियो फोटो बना करके कृषि विज्ञान केंद्र में आ करके बगल में जेडारस है वहाँ पे भी वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं। पर्सनली भी सलाह देना चाहूँगा कि यहाँ बगीचा लगाते हैं, बगीचा दूर में लगा है, लेकिन क्या होता है कि किनारे किनारे जैसे लहर का प्रकोप होता है यहाँ पे की दूरी पे, उसे बाढ़ जैसा लंबा टाइप का वो पौधा लगा सकते हैं, खासकर उत्तर और पश्चिम के दिशा में। उत्तर और पश्चिम की दिशा में ये लगाने से फसल का नुकसान होता है वो बचेंगे, खासकर आप देखेंगे गर्मी के दिन में आम के फसल पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता
1: जी,
0: है
1: जी। हाँ श्रोताओं, ये हुई बातें कि अभी वर्तमान में हमारे किसान भाई अक्टूबर नवंबर में किस प्रकार से बागवानी की देखरेख करें ताकि वो अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें, और विशेषज्ञ थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के दिलीप कुमार पांडे जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

कृषक भाइयों, अभी आप सुन रहे थे बागवानी फसल की देखरेख इस विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे कृषि विशेषज्ञ पलामू के दिलीप कुमार पांडे जी। बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। आइए आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद आपको आपसे बात करते हैं चना की उन्नत किस्में और खेती के बारे में। तो चना रबी मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है, यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण होने

0: की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक है। कुछ उन्नत किस्मों का चयन आप जरूर कर लें। अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और उपलब्ध सिंचाई के अनुसार प्रमाणित बीज का चुनाव करें। चने की किस्मों में JG11, JG14, JG16, JAKL 9218 और पूसा 272 जैसी किस्में भी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। अपने जिले के लिए उपयुक्त किस्म की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें आप।
1: और चने की सफल खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी और उन्नत किस्मों का भी चयन करना जरूरी है। जैसे देशी चना के लिए जाकी 9218, RVG 202, RVG 203 और पूसा 3911, काबली चना के लिए KAK2 और JGK1 और JGK21। पछेती और अन्य किस्में में आप RSG 44 और HC7 यानी कम अवधि और पछेती बुआई के लिए आप लगा सकते हैं। बुआई का समय है अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य, यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय सबसे अच्छा होता है। और बीज की मात्रा में सिंचित क्षेत्र के लिए 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और असिंचित यानी बरानी क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बनडाजिम या ट्राइकोडर्मा और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें।
0: मिट्टी की जांच के आधार पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। चना दलहनी फसल, इसलिए राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित करने की सलाह कई कृषि सिफारिशों में दी जाती है। इससे पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता मिलती है। चना में अधिक सिंचाई से बचें, आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। शुरुआती अवस्था में खरपतवारों को नियंत्रित करना जरूरी है। चना में फली छेदक प्रमुख कीटों में से एक है। खेत की नियमित निगरानी करें। किसान भाइयों, कीट या रोग दिखाई देने पर बिना पहचान के दवा का प्रयोग ना करें। कृषि विशेषज्ञ की अनुशंसा के अनुसार ही नियंत्रण उपाय अपनाएं। तो किसान भाइयों, याद रखें कि उन्नत बीज, सही समय पर बुआई, संतुलित पोषण, उचित सिंचाई और समय पर कीट रोकों चना की असली अच्छी फसल की पहचान है।
1: और सिंचाई की बात करें तो चने में पहली सिंचाई फूल आने से पहले यानी 40 से 45 दिन पर और दूसरी सिंचाई फली बनते समय यानी 75 से 80 दिन पर करनी चाहिए।
0: फसल में फली छेदक कीट्स को नियमित निगरानी करें। खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार के स्टिक लगाना और फेरोमोन ट्रैप जैसी समेकित कीट प्रबंधन विधियां अपनाना उपयोगी हो सकता है। रासायनिक दवा का प्रयोग केवल अनुशंसित मात्रा और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें।

जब पौधे पूरी तरह पक जाएं और फलियां सूखने लगें तब उचित समय पर कटाई करें। अनाज को अच्छी तरह सुखाकर ही सुरक्षित एवं साफ स्थान पर भंडारित करें।

चने की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार जैसे बथुआ, खरतुआ, मोरवा, प्याजी, मोथा, दूब आदि उगते हैं। ये खरपतवार फसल के पौधों के साथ पोषक तत्वों, नमी, स्थान एवं प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करके उपज को प्रभावित करते हैं।

0: अतिरिक्त खरपतवारों के द्वारा फसल में अनेक प्रकार की बीमारियों और कीटों का ही प्रकोप होता है जो बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। खरपतवार द्वारा होने वाली हानि को रोकने के लिए समय पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। चने की फसल में दो बार गुड़ाई करें। प्रथम गुड़ाई फसल बुआई के 30 से 35 दिन के बाद, दूसरी 50 से 55 दिनों के बाद करनी चाहिए। यदि मजदूरों की उपलब्धता ना हो तो फसल बुआई के तुरंत पश्चात पैंडी मेथिलीन को 2.50 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलना खेत में समान रूप से मशीन में छिड़काव करें। फिर बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद एक गुड़ाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार आप चने की फसल में खरपतवारों द्वारा होने वाले हानि, इसी चर्चा के साथ अब हमारा समय भी खेतीबाड़ी से समाप्त होने को चला है, इसलिए बातें आज यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषकों को समझ कार्यक्रम ग्रामीण सब खेती बाड़ी, माफ़ कीजिएगा, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागिनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: ग्रामीण सभा कार्यक्रम में सबसे पहले बातें समसामयिक कृषि कार्य की। परिपक्व खरीफ फसलों की कटाई करें और अनाज को भंडारण करने से पहले अच्छी तरह सुखा लें। खड़ी फसलों में कीटों और बीमारियों का नजर रखें। मिट्टी में नमी के आधार पर कब्जी और दूसरी फसलों की सिंचाई करें। शांत मौसम में पौधों की सुरक्षा के जरूरी उपाय करें और पशुओं के लिए पीने के पानी का उचित इंतजाम रखें। वर्तमान मौसम की स्थिति में रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जुताई और पाटा ठीक से लगाना चाहिए।
1: मक्के की फसल जहां भुट्टे में दाने लग रहे हैं उनकी रखवाली का समय आ गया। इसके लिए किसान खेतों में खंभों के सहारे चमकीले फीता बांधे और इस फीता पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक को देखकर पक्षी दूर भागते हैं और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में फूल आने से लेकर दूध देने की अवस्था तक नियमित रूप से गांधी कीट की जांच करते रहें। यदि कीट की संख्या अधिक है तो उन्हें इमीडा क्लोरोप्रिड 0.6%, लैम्डा साई हेलोथ्रिन 4%, एसएल 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बात करते हैं अरहर की, तो अरहर के फसल अभी अपनी चरम वनस्पति वृद्धि अवस्था में है। अगले 5 दिनों तक मौसम हल्के बादलों से ढका रहने से नमी में वृद्धि और दिन और रात की मिट्टी और वायुमंडलीय तापमान में कमी के परिणाम स्वरूप कीटों का संक्रमण हो सकता है। यदि पत्ती खाने वाले कीटों का संक्रमण है तो एजिडा डायरेक्टिन 1.0% ईसी यानी 10,000 ppm 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें और शाम के समय में

0: बैसिलस थ्रूजियंसिस 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। अब बात करते हैं बागवानी विशेष की, तो गोभी की बात करते हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे सितंबर अक्टूबर में पत्ता गोभी की जो अगेती बुआई किए हैं, सामान्य किस्म के लिए बीज दर 300 से 320 ग्राम प्रति एकड़ और संकर किस्मों के लिए 120 से 125 ग्राम प्रति एकड़ रखें। रोपण दूरी 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर रखें और इसकी उन्नत किस्में हैं गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, प्राइड ऑफ इंडिया, संकर, गंगा, जमुना, कावेरी।
1: और अब बात मुर्गी पालन की। हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है, इसलिए पॉल्ट्री कूड़े में चूना मिलाएं। 7 दिनों के चूजों को आरडी का टीका दें। कोक्सीडायोसिस को रोकने के लिए पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें। खेत से अतिरिक्त पानी निकाल दें। बारिश और उच्च आर्द्रता के कारण सब्जियों में झुलसा और रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत की नियमित निगरानी करें। ये देखा जाए तो ब्लाइट के लिए मैंकोजे 75% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी और रस चूसने वाले कीट के लिए इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8% SL 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। और अब आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता कृषि वानिकी इस विषय पर। भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें नवीन कृषि यंत्रों की, जो खेतों खलिहानों में उतारे गए हैं और जो हमेशा हमारे काम आते हैं कृषि यंत्र, और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि कृषि यंत्र जो हैं, नवीन कृषि यंत्र जो वर्तमान में खेतों खलिहानों में उतारे जा रहे हैं, वो कौन कौन से कृषि यंत्र?
3: कृषि यंत्र बहुत सारे कृषि यंत्र हैं जो किसानों के उपयोगी हैं, क्योंकि आज के समय में उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग करके ही किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। खेत में जब तक आज देख रहे हैं कि बहुत सारे खेत में जो ऑपरेशन होते हैं खेती बाड़ी में, उसमें बहुत सारे लेबर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग कर किसान भाई अपने समय की बचत कर सकते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं तथा अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते। तो उन्नत कृषि यंत्र की जानकारी किसानों को होना चाहिए, है ना। दूसरी बात आती है कि कृषि यंत्र कौन कौन से होते हैं खेती में उपयोगी होने वाले। बहुत सारे कृषि यंत्र हैं, लेकिन हर किसान की अलग अलग आवश्यकता होती है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ मानव चालित कृषि यंत्र भी होते हैं, कुछ पशु चालित कृषि यंत्र होते हैं, कुछ पावर चालित भी कृषि यंत्र होते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसान उस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप खेत की जुताई से लेते हैं, मतलब कृषि यंत्र हर क्षेत्र खेती में हर स्टेप पे कृषि यंत्र का उपयोग है, क्योंकि खेत की जुताई से लेकर के आपकी फसल की ढुवाई तक में कृषि यंत्र का उपयोग होता है। खेत की जुताई कीजिए, जुताई के बाद बुआई है, बुआई के बाद सिंचाई है, सिंचाई के बाद उसकी कटनी है, और कटनी के बाद फिर मार्केट में पहुँचाने की बात आती है, उसका स्टोरिंग की बात आती है, सारे में कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। खासकर जब खेत की, अब यहाँ झारखंड की किसान की बात करते हैं, तो झारखंड में की जो खेती है वो दूसरे तरह की, क्योंकि यहाँ की खेती जो है बहुत सारे किसान की बहुत छोटे छोटे जोत में है और जो है समतल नहीं है, तो इसके अनुसार ही उसके कृषि यंत्र का चुनाव करना होगा। जैसे अब किसान भाई जुताई के लिए करते हैं, तो जुताई में जनरली जो है देसी हल का उपयोग किसान करते हैं। अगर उसके जगह पर किसान भाई मोल्ड बोल्ड हल का करें, पहली जुताई, उसमें देखिए खेत की जुताई भी 2 पार्ट में हम बांटते हैं, प्राथमिक जुताई और सेकेंडरी जुताई। तो प्राथमिक जुताई में अगर मोल्ड बोल्ड हल से करके फिर दूसरी जुताई में अगर कल्टीवेटर से उसकी जुताई करते हैं, तो खेत की अच्छी तैयारी हो जाती है और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है। जैसे अगर देसी हल से अगर किसान भाई करते हैं खेती जुताई, तो उसको खेत को, एक खेत को जोतने के लिए कम से कम 3 बार या 4 बार चलाना पड़ता है खेत को। लेकिन आप अगर उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं तो उसमें आपका काफी समय की बचत होगी, प्लस जो उसमें लागत खर्च है उसमें कमी आएगी। तो आप मोल्ड बोल्ड हल से उसकी जुताई करके उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई खेत की तैयारी करके उसमें बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कहीं कहीं की झारखंड के किसान की जो खेत है वो कंकड़ीली पथली भी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है अगर देसी हल से खेती करते हैं तो काफ़ी उसमें कष्ट आती है, काफ़ी समय लगता है और ख़राब भी। तो ऐसे में आप डिस्क हैरो डिस्क प्लाव का अगर उपयोग करते हैं तो खेत की अच्छी जुताई हो जाती है और फसल का भी उसमें अगर खेत की अच्छी तैयारी होगी तो फसल उसमें अच्छी होगी। तो डिस्क प्लाव या डिस्क हैरो से खेत की तैयारी आप कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ की जुताई में जो है आप मोल्डबोल हल डिस्क प्लाव या कल्टीवेटर या डिस्क हैरो ये सारे का उपयोग करके किसान आप खेत की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और कम खर्च में कम लागत में और कम समय में उससे खेती कर सकते हैं। अगर खेत की तैयारी अच्छी हो गई तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। अब दूसरी आती है खेत की तैयारी के बाद उसमें बुआई की। अब उसमें कोई किसान जो भी फसल की बुआई करते हैं तो बुआई में जनरली किसान यहाँ के क्या करते हैं छींटा विधि से छींट देते हैं किसी बीज को, तो उसमें जो है कि एक तो बीज की मात्रा भी ज़्यादा लगता है और प्रॉपर जो है वो डिस्टेंस पर उसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती, अच्छी जर्मिनेशन नहीं हो पाती है, जिससे फसल उनका अच्छा नहीं हो पाता है। तो वैसे में अगर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का किसान उपयोग करें तो उसमें काफ़ी आपका समय की बचत होगी, आपके बीज की बचत होगी, आपका जो जो फसल भी होगा वो भी अच्छा होगा और उत्पादन भी करीब 15 से 20% तक उत्पादन भी बढ़ेगी
2: जी।
3: तो किसान ये कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं।
2: अच्छा।
3: दूसरी बात एक मशीन आती है आजकल बहुत प्रचलन में है, जीरो टिलेज मशीन।
2: अच्छा।
3: जो गेहूं की बुआई में बहुत अच्छी उसका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। धान के काटने के बाद किसान जनरली गेहूं की खेती करते हैं, जहां सिंचाई की सुविधा है वहां गेहूं की खेती करते हैं। तो ऐसी खेती में अगर जीरो टिलेज मशीन की से बुआई करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा
2: जी।
3: क्योंकि किसान धान काटने के बाद उसी खेत में गेहूं लगाते हैं और गेहूं लगाने में क्या होता है, गेहूं में ऐसा देखा गया है कि अगर समय पर बुआई नहीं होती है तो उसके उत्पादन कम हो जाती है। तो समय पर बुआई किसान लाचारी में भी नहीं कर पाते हैं, जैसे धान की कटनी किए अगर मान लीजिए कि उसमें नमी ज़्यादा है तो उसकी जुताई नहीं कर पाते हैं, नमी प्रॉपर आने पर ही खेत की जुताई होती है। अगर नमी कम है तो उसमें फिर एक पटवन देते हैं, एक पटवन देने के बाद फिर उसकी जुताई लायक जो नमी आती है तब भी जुताई करते हैं, तो उसमें भी करीब एक सप्ताह का लेट देरी हो जाती है। तो ऐसे में किसान को बुआई करने में गेहूं की बुआई करने में देरी हो जाती है, लेकिन अगर जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करते हैं किसान भाई तो इसमें देरी नहीं होगी। धान आज काटे अगर मान लिया कि खेत में नमी ज़्यादा है उस स्थिति में भी जीरो टिलेज को उसमें चला सकते हैं और खेत में नमी कम है उस स्थिति में भी जीरो टिलेज से गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ कि उसमें आपके समय अगर जीरो टिलेज मशीन से बुआई करते हैं, जीरो टिलेज मशीन कहने का अर्थ नाम से ही पता चल रहा है जीरो टिलेज, उसमें जुताई नहीं करनी है। एक धान काटने के बाद एक फरो बनाता है और उस फरो में ही गेहूं और खाद दोनों गिरते जाता है और एक लाइन में उसकी बुआई हो जाती है। तो इससे फायदा ये होता है बीज और खाद दोनों साथ साथ गिरता है, साथ कहने का अर्थ कि बीज जो है जो खाद गिरता है उसके बीज से नीचे गिरता है, थोड़ा सा ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि खाद जो है बीज से थोड़ा नीचे गिरता है, तो जैसे ही बीज में जर्मिनेशन होगा वो उसको तुरंत न्यूट्रिएंट मिलने लगेगा तो ये पौधा भी अच्छा होगा। दूसरी खेत की जुताई नहीं हुई है तो जुताई नहीं होने के कारण उसमें जो है वीट्स कम उगेंगे, वीट्स बहुत कम उगेंगे, तो इससे उसका उत्पादन जो है अच्छा होगा। दूसरी बात अगर जीरो टिलेज की जुताई की बात और बुआई की बात आ गई, अब जैसे आती है कि बुआई के बाद जो है सिंचाई की बात आती है, सिंचाई करने के में भी तो जनरली जो किसान यहाँ के हैं सिंचाई में जनरली बहाव पत्ती से ही सिंचाई करते हैं। तो बहाव पत्ती से सिंचाई करने में क्या होता है कि किसी पौधा को ज़्यादा पानी मिल जाता है, किसी पौधा को कम पानी मिलता है, तो इसमें यह है कि उत्पादन जो है इफेक्ट होता है, उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम होता है और पानी की मात्रा भी ज़्यादा लगता है। तो जहाँ और झारखंड में पानी का भी थोड़ा सा सोर्स कम है तो उस पानी को ध्यान में रखते हुए अगर उन्नत सिंचाई यंत्र का भी उपयोग कर रहे हैं किसान भाई तो उससे भी पानी की बचत होती है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। उन्नत सिंचाई यंत्र में जैसे अभी जो है टपक विधि आया है, ड्रिप इरिगेशन आया है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आया है, तो इस विधि से भी सिंचाई किसान कर सकते हैं, या जो है आप बेसिन इरिगेशन से कीजिए। अच्छा। अगर फ्लड इरिगेशन भी है से भी कर रहे हैं तो उसमें बेसिन इरिगेशन क्यारी बना बना करके, छोटे छोटे क्यारी बना कर करें, जैसे और कुछ फसल ऐसे गेहूँ की

0: वाई कर सिंचाई करनी है तो उसमें जो है आप बेसिन इरिगेशन से सिस्टम से कर सकते हैं। दूसरी अगर मान लिया कि आप मक्का लगा रहे हैं चाहे आलू की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है फरो इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, है ना। तो एक सिंचाई की भी नवीन नवीन विधियां हैं, बहुत सारे विधियां हैं, उस विधि से भी किसान सिंचाई करके फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आज के समय में जो है पंजाब हरियाणा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है उन्नत कृषि यंत्र का उपयोग करके ही आज जो है कृषि उत्पादन में अग्रिम पंक्ति में वो राज्य पहुंच गया है, है ना।
1: अगर कीटनाशी छिड़काव की बात करें तो
0: हाँ, कीटनाशी छिड़काव के लिए भी बहुत सारे उन्नत कृषि यंत्र हैं। अब पहले जो है आप जो यहाँ के किसान क्या करते थे कि कोई भी कीटनाशक छिड़काव करना है तो घोल करके झाड़ू से चाहे ऐसे छिड़काव करते थे, तो उसमें के जैसे नैपसैक स्प्रेयर है जो पीठ पर लाद करके भी स्प्रेयर से कर सकते हैं। तो आजकल जो है पावर स्प्रेयर भी आ गया है, पावर स्प्रेयर से है, बैटरी चालित स्प्रेयर है, है ना। बैटरी चालित का आपको उसमें जो है किसान को ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, उसमें जो है इंजन उसमें बैटरी लगा हुआ है, है ना। बैटरी एक बार रात में चार्ज कर लीजिए और जो भी घोल को जो भी कीटनाशक को छिड़काव करना है उसका घोल को उसमें भर करके आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। तो उसमें जो है किसान को ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, ज़्यादा जो है मेहनत नहीं पड़ती है और आसानी से छिड़काव हो सकता है। जहाँ तक अगर मान लिया कि बड़े बड़े खेत है उसमें छिड़काव करना है तो वहाँ पावर स्प्रेयर भी है, पावर स्प्रेयर जो आप जो है पेट्रोल या डीजल से भी चलती है, है ना, उसको स्टार्ट करके आप स्प्रेयर कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ कि बहुत सारा है कृषि यंत्र उन्नत, उसका उपयोग करके किसान आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपनी बचत को कर सकते हैं।
1: कटाई की बात जहाँ तक आती है तो हमारे किसान भाई उस समय नवीन हसुआ वगैरह का प्रयोग करते हैं और भी बहुत से कृषि यंत्र हैं, उसकी जानकारी करें।
0: जी हाँ, आते हैं लास्ट में फसल की कटाई भी आती है। तो फसल की कटाई के लिए जो है किसान भाई देसी हसुआ का उपयोग करते हैं, है ना, देसी हसुआ का। लेकिन हम उसी जगह पर थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर दें, नवीन हसुआ या वैभव हसुआ का जो आया है उससे अगर कटनी करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में किसान को कम मेहनत में ज़्यादा कटाई हो जाती है। अगर मान लें कि देसी हसुआ से आप एक दिन में अगर दो कट्ठा की कटाई कर रहे हैं तो अगर आप नवीन हसुआ या जो वैभव हसुआ का उपयोग करते हैं तो उससे आपका उससे दुगुना या तीन गुना ज़्यादा काट सकते हैं। तो आप ज़्यादा काट भी सकते हैं और मेहनत कम मेहनत में काट सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा है, जैसे रीपर भी है, रीपर से भी कर सकते हैं, मानव चालित रीपर भी है, पावर चालित भी रीपर है, तो रीपर से भी आप खड़ी फसल को आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद बड़े बड़े अगर किसान हैं तो उसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर भी है जो एक ही बार में काट भी सकती है, उसका दमाई भी कर सकती है और उसका जो बीज निकला उसका पैकिंग भी कर सकती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर का भी उपयोग बड़े बड़े किसान हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन झारखंड के क्षेत्र में जो है छोटे रीपर का उपयोग करके किसान भाई उसका जो धान गेहूँ या जो भी खड़ी फसल है उसकी कटाई कर सकते हैं। तो कटाई यंत्र भी बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में और उसका उपयोग किसान कर सकते हैं।
1: देखा जाता है कि खर पतवार जब उग आते हैं तो उससे फसलों जी हाँ बहुत हानि होती है, तो उसके नियंत्रण के लिए
0: हाँ उसके नियंत्रण के लिए बहुत सारा यंत्र है। जैसे आप जो मानव चालित यंत्र है जैसे डच हो, व्हील हो है, पहले तो लोग किसान यहाँ के क्या करते हैं खुरपी या इससे निकाई गुड़ाई करते थे, लेकिन उससे क्या होता है समय भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगता है और उनका कॉस्ट ज़्यादा चला जाता है, लागत खर्च। तो उसके जगह पर बहुत सारे जो है यंत्र को बनाया गया है नवीन यंत्र को, जैसे जो है डच हो है, व्हील हो है, ग्रवर है, ये सब का उपयोग करके किसान आप निकौनी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे है, अगर बड़े बड़े प्लॉट में भी करना है तो पावर वीडर भी है, पावर वीडर का उपयोग करके भी किसान आसानी से उसको कर सकते हैं। ये सारे जो है किसान इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे अब किसानों के लिए एक पावर टिलर की बात आती है, पावर टिलर भी एक छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी चलाना चाहे जैसे रीपर चलाना चाहते हैं पावर जो है पावर टिलर में उसको अटैच करके भी उसको चला सकते हैं रीपर को। तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। पावर टिलर में तो छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं कि उससे आप जुताई भी कर सकते हैं, आप उसे बुआई भी कर सकते हैं, सीड ड्रिल भी उससे चला सकते हैं, फिर कटनी भी उससे जोड़ करके कर सकते हैं, जैसे रीपर अटैच करके रीपर से भी उससे कर सकते हैं, उससे सिंचाई भी कर सकते हैं, पंप भी चला सकते हैं। तो पावर टिलर जो है छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसे ट्रैक्टर तो हैं ही किसानों के लिए।
1: निकाई गुड़ाई

0: के लिए कोई यंत्र नहीं है,
1: निकाय गुड़ाई के लिए है ही, ग्रह बार है, डच अच्छा, हो है,
0: पावर गुड़ाई
1: हाँ निकाय गुड़ाई उससे कर सकते हैं,
0: खरपतवार खर,
1: हाँ वो खर निकाय गुड़ाई हुई, खरपतवार निकालना हुआ, पावर बीडर हुआ, ऐसे किसान भाई कल्टीवेटर से भी जो है निकौनी कर सकते हैं, अगर दूर दूर जैसे उसको एडजस्ट करके कर सकते हैं, तो बहुत सारा ऐसे यंत्र हैं, पावर बीडर आया है, पावर बीडर
0: ओसाने के लिए कोई यंत्र,
1: हाँ ओसाने के लिए भी है काफ़ी यंत्र है, जैसे आप थ्रेसर, थ्रेसर में ही है, कटनी के बाद आती है थ्रेसिंग की बात आती है, कोई भी फसल की थ्रेसिंग करना है तो थ्रेसिंग में भी बहुत सारा मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, पैडी थ्रेसर है, तो इसका उपयोग करके आप जो है थ्रेसिंग एंड विनोइंग सफाई उसकी दोनों हो जाती है उससे,
0: अच्छा
1: तो थ्रेसर से उसके
0: और ये स्वचालित है,
1: नहीं पावर से चालित है,
0: पावर से चालित,
1: पावर से चालित है।
0: अच्छा, आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि वानिकी

0: अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे, कृषि वानिकी विषय भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए आज की चर्चा करते हैं सरसों की खेती की तैयारी। सरसों की सफल खेती के लिए खेत की तैयारी, सही समय और संतुलित खाद की बात हम कर लें तो सबसे पहले समय की बात करें। अक्टूबर से नवंबर का पहला सप्ताह बुआई के लिए सबसे अच्छा है। अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और वृद्धि के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। इसके लिए खेत की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। जुताई की बात करें तो 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाएं, पाटा चलाकर खेत को समतल करें ताकि नमी बने रहे और जल भराव ना हो। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 सबसे अच्छी होती है।
1: और खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो गोबर की खाद आप बुआई से 3-4 सप्ताह पहले और 4 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाएं। रासायनिक खाद की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश संतुलित मात्रा में दें। सल्फर का उपयोग जरूर करें, इससे तेल की मात्रा बढ़ती है। बीज दर 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़। बीज उपचार बुआई से पहले फफूंदी नाशक जैसे कार्वेजिम या थायरम से बीज उपचार करें और इसकी दूरी कतार से कतार 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर। गहराई बीज 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरे न आप रोपें और

0: लामू में आज का तापमान हम आपको बता दें, आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 42% रिकॉर्ड की गई।
1: और चलते चलते आज की नसीहत में हम बात करते हैं गेहूं में कीट प्रबंधन की। तो ग्रामीण भाइयों, गेहूं की फसल में दीमक, माहू, गुलाबी तना बेधक और सैनिक कीट आदि नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचाव के लिए समेकित कीट प्रबंधन यानी IPM अपनाना चाहिए। सबसे पहले खेत की सफाई, बुआई से पहले खेत से खरपतवार और फसल के अवशेष को हटा दें। समय पर बुआई, उचित समय पर गेहूं की बुआई करने से कई कीटों का प्रकोप कम होता है। संतुलित खाद जिसमें नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा न दें क्योंकि इससे माहू का प्रकोप बढ़ सकता है। खेत में पर्याप्त नमी रखें और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। आवश्यकता होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग करें। खेत की नियमित निगरानी करें। शुरुआती अवस्था में प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडीबर्ड बीटल को संरक्षण दें। जैविक नियंत्रण की बात करते हैं तो नीम आधारित जैव कीटनाशकों का उपयोग भी आप कर सकते हैं।
0: सप्ताह में कम से कम एक बार पौधों और बालियों को देखकर कीटों की पहचान करें। जब कीट आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तभी स्थानीय कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार पंजीकृत कीटनाशक का प्रयोग करें। फसल चक्र अपनाए लगातार गेहूं की खेती करने के बजाय फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में रहने वाले कीटों का प्रकोप घटता है। गर्मियों में खेत की जुताई करने से मिट्टी में छिपे कीटों और उनके अंडे लार्वा नष्ट होते हैं। आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें और खेत में लंबे समय तक पानी जमा ना रहने दें। खेत और मेड़ों को खरपतवार मुक्त रखें क्योंकि कई कीट खरपतवार पर आश्रय लेते हैं। मकड़ी, लेडीबर्ड बीटल और परजीवी ततैया जैसे लाभकारी जीवों को बचाएं। कुछ कीटों की निगरानी के लिए प्रकाश या फेरोमोन ट्रैप उपयोगी हो सकते हैं। सूखे पौधे, पीली पत्तियां, मुड़ी हुई पत्तियां या कमजोर बालियां दिखाई दे तो तुरंत कारण की जाँच करें।
1: तो ग्रामीण भाइयों, इसी नसीहत के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे रांची केंद्र का प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
2: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
3: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
5: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
4: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
5: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
4: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
9: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
10: कंडो,
9: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
11: खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 207 विद्यार्थियों को दी उपाधि। रक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को रांची में निकाला जाएगा भाषा मार्च। सभी 9 भाषाओं से जुड़े छात्र और भाषा प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत वेस्टइंडीज T20 के टिकट खरीदने उमड़े क्रिकेट प्रशंसक। JSCA स्टेडियम में टिकट काउंटर खुलते ही लगी कतार। 9 अक्टूबर को होगा मुकाबला। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू। पहले मुकाबले में आनंदा कॉलेज हजारीबाग ने आदर्श कॉलेज राजधनवार को हराया। और अब समाचार विस्तार से। रांची में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने 5 गोल्ड मेडल समेत 207 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।
1: आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ साथ सुरक्षित सक्षम समाज की आवश्यकता भी है। इसलिए सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवा केवल कानून व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, बल्कि देश के विकास के लिए आवश्यक विश्वास, स्थिरता और सुरक्षित वातावरण के निर्माण में भी योगदान देने का कार्य करेंगे।
0: वहीं मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना और अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। समारोह में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के निदेशक G.K. गोस्वामी भी शामिल हुए।
2: बैटल फील्ड को तब तो साइबर पे ही है, तो बच्चे यहाँ से निकल कर दक्ष हूँ। हमने कहा इन बच्चों को कि यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत, आप सीखो, आप मोटिवेट हो, आप जो काम करें ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, वर्क डिसिप्लिन, फूड डिसिप्लिन, हर चीज की डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो आगे आपको जीवन में बहुत बड़ा आधार मिलेगा।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में महिला को रखे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गृह सचिव वंदना दादेल अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। झालसा की जांच रिपोर्ट में महिला ने 3 पुलिसकर्मियों पर

0: दफ्तर तक ले जाया जाएगा।
1: हमारी जो भाषा, हमारा परंपरा, वो नौ भाषा जो है, उसको हम मार्च के माध्यम से हम सरकार को उस पर हम बताना चाहते हैं। पूरे नौ भाषा भाषी छात्र छात्राएं से लेकर सभी लोग एकजुट हैं पूरा इसमें, क्योंकि देखिए चाहे राजनीतिक शक्ति हो, चाहे यहाँ का विकास से संबंधित हो, ये तमाम चीज भाषा से ही हो सकता है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने की 26 तारीख को जारी प्रेस विज्ञप्ति को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध है और निर्वाचन आयोग ने इसे नहीं हटाया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के उप महाप्रबंधक मनीष जैन ने सोमवार को टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बर्मा माइंस छोर पर चल रहे स्टेशन विस्तार, फोर लेन सड़क, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM तरुण हुरिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ABVP की ओर से मातृवंदन नारी शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं को सामाजिक मुद्दों, सोशल मीडिया कंटेंट और युवाओं से जुड़े विभिन्न नैरेटिव को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर IRS अधिकारी निशा उरांव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं को अधिकारों, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की अपील की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे ट्राइबल फाइटर म्यूजियम और गौरव दिवस की। इसी कड़ी में झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अस्मिता को वैश्विक पहचान देने के लिए खूंटी में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है।
2: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। और इसी कड़ी में 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा।
0: इधर जनसेवा से राष्ट्र सेवा के संदेश को लेकर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी से पेश है एक रिपोर्ट।
3: बिरसा मुंडा को यूं ही नहीं, धरती आबा, भगवान और झारखंड के महानायक जैसे उपाधियों से नवाजा गया है। बिरसा मुंडा के संघर्षों ने अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और उनके संघर्षों का ही प्रतिफल है कि आज झारखंड में CNT एक्ट जैसे कानून हैं जिसे आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा जाता है।
0: पाकुड़ के रविंद्र भवन में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तेजस जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को स्टार्टअप शुरू करने, नवाचार, प्रशिक्षण, मेंटरशिप, वित्तीय सहयोग और बाजार से जुड़ाव की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने युवाओं से स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तलाशने और नए विचार विकसित करने की अपील की। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के पिपरा दामर जंगल में एक जंगली हाथी मृत मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। DFO एविन बेनी अब्राहम ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही

0: मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत वेस्टइंडीज टी20 मैच के लिए आज सुबह 9 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। काउंटर खुलते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें राज्य के कई जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए क्रिकेट प्रेमी शामिल हैं। टिकट मिलने के बाद दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रामगढ़ कॉलेज में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 महाविद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुलपति प्रोफेसर डॉ. चंद्रभूषण शर्मा ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल को भी जरूरी बताया।
1: हम संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जब बोल रही है बात, तो उससे क्या हो रहा है कि जितने भारत के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं खेल के प्रति। ऐसा आयोजन हमारे झारखंड में हमेशा हो, हर एक साल हो। ऐसा आयोजन का एक ही उद्देश्य है ताकि मतलब प्लेयर्स लोग मतलब अपना जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, जो कर रहे हैं हर एक साल, वो खेल में आकर के दिखाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 207 विद्यार्थियों को दी उपाधि। रक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर दिया जोर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का किया आह्वान। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को रांची में निकाला जाएगा भाषा मार्च। सभी 9 भाषाओं से जुड़े छात्र और भाषा प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत वेस्टइंडीज टी20 के टिकट खरीदने उमड़े क्रिकेट प्रशंसक। जेएससीए स्टेडियम में टिकट काउंटर खुलते ही लगी कतार। 9 अक्टूबर को होगा मुकाबला। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू। पहले मुकाबले में आनंदा कॉलेज हजारीबाग ने आदर्श कॉलेज राजधनवार को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है। बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
3: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
2: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
3: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
7: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
8: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
9: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
8: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
9: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
8: माहवारी प्रारंभ होती है,
9: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
8: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
11: नए झुमके ना, पहले बचत,
12: पहले झुमके।
11: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
12: लेकिन झुमकों का क्या?
11: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
13: आरबीआई कहता है,
14: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
15: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
16: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
17: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर से अमानत नदी तक दौड़ का आयोजन हुआ। पलामू के उपायुक्त ने 48 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बापू के आदर्शों

0: को अपनाने की अपील की।
1: सांकेतिक तौर पे दौड़ का आयोजन किया गया, मैंने स्वयं भी इसमें भाग लिया और कोशिश की कि जो दौड़ने में हम लोग संघर्ष करते हैं कि हमको कम समय में रेस को कंप्लीट करना है, वही संघर्ष हमें हम सभी युवाओं को करना है, चाहे वो स्वच्छता का उद्देश्य हो, चाहे हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का संचार। इसके लिए युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आज के समय में जिनको हम लोग कहते हैं जेन जी, ये जो वर्ग है इस पे देश की भविष्य की बागडोर निर्भर करती है। और मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग सबसे पहले तो अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखे, मजबूत रखे, और उसके बाद देश निर्माण के अंदर हमें जो भी कदम उठाना उसके लिए हम लोग संगठित, हम लोग जाति धर्म समुदाय इस सबसे ऊपर उठे।
0: झारखंड आंदोलन की के संघर्ष मोर्चा के द्वारा आहूत झारखंड बंद का आयोजन डाल्टनगंज में देखने को मिला। रेड़मा चौक पे को 3 घंटे तक जाम रखा गया। आंदोलनकारियों का नेतृत्व वीके शुक्ला कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन करने की वजह बताई।
2: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूरे झारखंड को आज बंद किया गया। झारखंड बंद करने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जो राज्य का निर्माण हुआ है, आंदोलनकारी जो निर्माण के राज्य बनाए हैं, उनको मान सम्मान पेंशन, बहुत कम जो जेल गए हैं उनको पेंशन मिलता है और जो जेल नहीं गए उनको नहीं मिलता है। तो चूंकि जेल गए हैं वो अकेले तो आंदोलन किए नहीं है, जेल जाने से मरने से मारने से डरते नहीं है और न डरेंगे, चूंकि डरते तो राज अलग होता नहीं। जब राज का निर्माण हम लोग किए हैं तो राज्य में सभी लोग को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे, हर हाल में करेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम लोगों, जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। तमाम राज्य के लोग आंदोलन किए और आंदोलन करने के बाद झारखंड अलग हुआ और झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान पेंशन और स्वाभिमान बाल बच्चे को आरक्षण का सुविधा उपलब्ध कराया सरकार।
0: पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सैलारी में भी नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। एक लाभुक बजरंगी कुमार मेहता ने कहा कि इस योजना से साफ स्वच्छ पानी प्राप्त हो रहा है।
3: नमस्कार, मैं बजरंगी कुमार मेहता, ग्राम देल्हा, पंचायत सैलारी, प्रखंड तरसी, जिला पलामू, झारखंड का निवासी हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग गंदा और मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर रहते थे, लेकिन और बच्चे लोग खास करके बहुत बीमार रहते थे और हम लोग का सारा कमाई बच्चे की बीमारी में चला जाता था। जब से मोदी जी ने नल जल योजना लाया है और नल के पानी हम लोग के घर घर आ रहा है, मीठा और साफ सुथरा, तब से बीमारी भी कम हो गया है। खास करके गाँव गरीब महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत उपकार का काम किया है।
0: पलामू जिले में जितिया विसर्जन और नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बताते चले कि जितिया पर्व संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के खाटिन गांव की है। मृतक की पहचान उपेंद्र गुप्ता के 13 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
4: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: मजा आ रहा है, सोमवार का दिन है। हाँ, लगातार वर्षों से आप ये बुनियाद कार्यक्रम सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको अपने करियर को चुनने में मदद मिल रही होगी। हालांकि ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपके फोन कॉल्स बताते हैं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत मदद कर रहा है अपने करियर में आगे बढ़ने में। एक बात तो साफ है आपके फोन से जो मैं कहता हूँ, राजेश आपका, हाँ नमस्कार सभी को, कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है भैया, टेक्निकल पढ़ाई कर लो तो रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञता हासिल करने से नौकरी मिले या ना मिले, आप अपना स्व रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, एक बात और कहता रहा हूँ कि बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि किसी राष्ट्रीय या राजकीय कंपटीशन में आप सफल नहीं हुए हैं, तो पढ़ने के लिए जाना बेमानी है। क्योंकि पैसे की बर्बादी हो ना हो, अपने राज्य में हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ है बिहार झारखंड में, जहां आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कम खर्चे में। जी हाँ, वही यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, टेक्निकल पढ़ाई का हब है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जबुआर सासाराम रोहतास बिहार, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम बुनियाद हम वर्षों से आप युवा साथियों के लिए लेकर आ रहे हैं। अपने काम में लगे हैं कि सही और सटीक जानकारियां हम आप तक पहुंचा दें। जी हाँ, हमने कहा खर्च की बात की है, लेकिन खर्च की बात जब हो रही है तो बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है जिस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको लोन के रूप में मिलता है जो बाद में पढ़ाई के बाद में आपको चुकाना पड़ता है। ढेर सारे सवाल ये भी आते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में किस किस प्रैक्टिकल यानी विशेषज्ञता हासिल करने वाली पढ़ाई होती है। तो भैया, हम बार बार बताते हैं कि यहाँ अगर आप मेडिकल यानी नीट क्वालिफाई करते हैं तो अपने बिहार में रह करके यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं जा पाए तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावे एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हैं। ये सारी पढ़ाई आपके बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर होती है, हाँ क्वालिटी वही उत्तम। जी हाँ, इसके अलावे लॉ की पढ़ाई है, जर्नलिज्म की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, हाँ बहुत सारी पढ़ाई है जिसे आप कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको लगातार एक नंबर देते हैं, एक सीधे सीधे मोबाइल का नंबर होता है, एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पर आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, नोट कीजिए सबसे पहले वो नंबर है 9431899002, और टोल फ्री नंबर जो है 1800121001, 1800121001। और एक वेबसाइट भी है जिसका पता भी हम बताते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं सारे कोर्सेज को, यूनिवर्सिटी को, क्योंकि करियर का सवाल है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, वेबसाइट का पता है gnsu.ac.in। जी हाँ, लगातार हम आपको सही और सटीक जानकारियां पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने बहुत सारी बातें बताई मैनेजमेंट के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, ANM GNM के बारे में, इसके अलावा फार्मेसी में फार्म डी का जो कोर्स आया है उसके विषय में। आज हम लॉ की बात करेंगे। कहते हैं ना कि देश जितना ज्यादा आगे तरक्की करेगा लीगल फील्ड में, जी हाँ लीगल फील्ड में बहुत सारे रोजगार मिलेंगे और वो वाइब्रेंट होगा क्षेत्र। और इसीलिए हम आज एक विशेषज्ञ को बुलाए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव, इनसे बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ 5-year law जो इंटीग्रेटेड लॉ है और 3-year law जो है, जो रेगुलर है, वो सबकी पढ़ाई होती है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और इन्हीं से चाहेंगे, बहुत ही लर्नेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जानकारियां दीजिए अंकुर जी अपने सुनने वालों को कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सारा कुछ है, सब कुछ जो बताना चाहते हैं पहले बता लीजिए।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी नारायण स्कूल ऑफ लॉ में एज ए प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, मेरा बेसिक LLB स्टार्ट हुआ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद मैंने LLM जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से कॉरपोरेट लॉ में किया। तत्पश्चात मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से PhD एंड पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की।
0: बहुत खूब, बहुत यूनिवर्सिटी आपने देखा और अभी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर अंकुर एक सवाल पूछें कि एक जमाना था जब किसी का कहीं कुछ नहीं होता था तो लॉ में एडमिशन ले लेता था, लॉ कर लेता था और लोग कहते थे कि अरे लॉ कर रहा है, लेकिन आज जो है परिस्थितियां बदल गई हैं, हाँ बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गया है लॉ का क्षेत्र, आप क्या समझते हैं?
1: सर, आपका कहना कुछ हद तक सच है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एडवोकेसी का एक जो प्रोफेशन है ये बहुत सेक्रेट प्रोफेशन है और आप देखिए दुनिया में जितने भी क्रांति हुई है, आंदोलन हुए हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई एडवोकेट खड़ा है। भारत में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एडवोकेट्स ही प्रमुख भूमिका निभाए हैं और मेरा यह मानना है कि बीच में एक समय ऐसा आया था एडवोकेसी की तरफ लोग जो है कम झुकाव, लोगों का कम झुकाव था, परंतु इसके पश्चात जब भारत में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हुआ और तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार एक उदाहरण है, बौद्धिक संपदा अधिकार और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो खत्म हुई, इसके पश्चात तमाम लिटिगेशन बढ़े और जब तक एडवोकेसी के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा नहीं तब तक हमें अच्छे एडवोकेट्स प्राप्त नहीं होंगे और जब अच्छे एडवोकेट्स उपलब्ध होंगे तभी जो है भारत की सामान्य जनता को न्याय तुरंत मिलने का संभावना बढ़ जाएगा। यही एक वजह है कि एडवोकेसी की तरफ आज बच्चों का पुनः झुकाव बढ़ गया है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आज बच्चे आ रहे हैं एडवोकेसी में, बच्चे आ रहे हैं लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और लोगों का रुझान एक बार फिर से हाँ लॉ की तरफ हुआ है। हम आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमें देर से सुनना शुरू किया है उनको बता दें कि आज हमारे साथ लॉ के प्रोफेसर हाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव बैठे हैं, इनसे बातचीत चल रही है लॉ करियर के बारे में और ये कार्यक्रम है बुनियाद। नंबर नोट करें, अगर जो आपको फोन से कुछ बातचीत करनी हो, जानकारियां लेनी हो कोर्स से संबंधित, तो इस नंबर को डायल करें 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर है 1800 121 0051 और एक वेबसाइट है GNSU.ac.in। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई के लिए परेशान हैं, परेशान ना हो, अपने राज्य बिहार में है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जहां से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं बात करके। तो देखिए फिलहाल लॉ की बातचीत चल रही है। हाँ डॉक्टर अंकुर, एक बात बताइए कि लॉ में बच्चे आए कैसे, आए लोग पढ़ाई करते हैं, नाम शोहरत पैसा सब कुछ मिल जाए, तो एडवोकेसी के साथ क्या है इसके बारे में बताइए थोड़ा।
1: सिर्फ एडवोकेसी में आप अगर आते हैं, इस प्रोफेशन में आते हैं एज एन एडवोकेट, तो आप मूल रूप से एक एडवोकेट के तौर पे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन लॉ पढ़ने के बाद बच्चों को सिर्फ इसमें और भी कैरियर मिलते हैं और इसमें क्या है कि आप एज ए सरकारी वकील, जज, तमाम लीगल फर्म्स में आप एज ए कॉरपोरेट लायर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही मतलब पढ़ाई की शाखा, एक ही शाखा है कि आप LLB कर रहे हैं या लॉ कहीं से कर रहे हैं, तो इससे आपको कई कई तरह के कैरियर आपको मिलेंगे। इसलिए बच्चों को मेरी ये सलाह है कि बच्चे इस प्रोफेशन को चुने और इसमें और भी, और जैसे आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है फर्म में आप जॉब पा सकते हैं, लेकिन लॉ करने के बाद आपका आयाम बहुत बड़ा हो जाता है, पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से बच्चों को मेरी ये सलाह है कि आप विधि व्यवसाय को चुनें, इसमें आपको करियर के तमाम कई तरह के अनुभव प्राप्त होंगे।
0: पढ़ाई के बाद एंड ऑफ द डे रोजगार की बात होती है, और डॉक्टर अंकुर आपने बच्चों को एकदम बता दिया कि लॉ करने के बाद लिटिगेशन करना, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, प्राइवेट सेक्टर में जाना, यानी एम्पल्स ऑफ स्कोप हैं लॉ करने के बाद। और आपने लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लिया बच्चों से कि आप लॉ की तरफ आए, 5 ईयर लॉ हो या 3 ईयर लॉ हो, कुछ भी हो लॉ करें, और लॉ का करियर बहुत ही वाइब्रेंट है। और अपने राज्य में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ है जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तवा, नंबर नोट करें जिस पर आप और अधिक सवाल पूछ सकते हैं, 9431899002, 9431899002। और दूसरा जो टोल फ्री नंबर है हमारा आपके लिए 1800-121-0051, और वेबसाइट है gnsu.ac.in। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर अंकुर आपसे, बच्चे जो हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के नारायण स्कूल ऑफ लॉ में ही क्यों आए?
1: नारायण स्कूल ऑफ लॉ में आने की एक वजह है, पूरे जहां तक मेरा अनुभव है पूरे बिहार में यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सबसे प्रमुख विधि की शिक्षा को महत्व दिया जाता है, और शिक्षा सिर्फ क्लास में एडमिशन लेने से नहीं होती है, क्लास अटेंड करना और उसके पीछे जो पूरा अन्य जो है शिक्षकों का जो एक जो है डेडिकेशन होता है, उसकी वजह से नारायण स्कूल ऑफ लॉ पूरे बिहार में एक जो है चमकता हुआ विधि के क्षेत्र में अध्यापन के लिए एक चमकता हुआ सितारा प्रतीत होता
0: है। इसके इन चीजों के अलावा
1: सर, नारायण स्कूल ऑफ लॉ में सभी विधि से के अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए तो मूट कोर्ट है, क्लासरूम है पूरी तरह से सुसज्जित, और इसके अलावा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी रिच लाइब्रेरी है, और वहाँ ऑनलाइन जर्नल्स भी उपलब्ध हैं, और बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ बच्चों को कंपटीशन में बाहर भी पार्टिसिपेट करने के लिए नारायण स्कूल ऑफ लॉ द्वारा भेजा जाता है।
0: थैंक यू डॉक्टर अंकुर, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आप आए इस बुनियाद कार्यक्रम में, आपने जानकारियां दी। हालांकि सवाल जो हमारे पास है अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ और विशेषताएं हैं आपके यहाँ की जो आपसे हमारी बातचीत हो रही थी तो पता चला, उसे हम अगले एपिसोड में युवाओं तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोगों ने सुना कि लॉ की पढ़ाई अब बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है रोजगार की दृष्टि से, सिर्फ सरकार में नहीं, प्राइवेट में नहीं, अपना भी कर सकते हैं, और मल्टी डायमेंशन है हाँ लॉ की पढ़ाई करने के बाद करियर। आप जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ। नंबर नोट करो 9431899002 और 1800-121-0051। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया, और अपने बिहार में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी लगाई आपने कि बच्चों का भला हो सके। तो चलता हूँ, राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

अब लौट चलें। फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ अलका याग्निक की थी, गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। आप मुझे अच्छे लगने लगे, आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

0: आप मुझे अच्छे लगे नहीं लगे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और साथियों की, शब्द रचना देव कोहली की थी और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इसी नगमे के साथ ही अब आज का सुर संध्या कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता, विषय है मनोविक्षिप्तता कारण एवं बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार, मनोचिकित्सक पलामू।
1: कल्याणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आइए आज इस कार्यक्रम में आपको मानसिक रोग पर विस्तृत जानकारी दिलवाते हैं। मानसिक रोग में हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि मनोविक्षिप्तता ये बहुत ही भयानक रोग है। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिले के सदर अस्पताल में पदस्थापित मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपको हमारा नमस्कार।
2: जी, आपको भी नमस्कार, सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, ये मनोविक्षिप्तता क्या है?
2: मनोविक्षिप्तता मानसिक रोग में एक गंभीर बीमारी है और मनोविक्षिप्तता में रोगी का वास्तविकता से नाता एकदम टूट जाता है, रियलिटी कॉन्टेक्ट उसका खत्म हो जाता है। रियलिटी कॉन्टेक्ट खत्म हो जाने से उसकी अपनी जो दिनचर्या होती है वह अलग हो जाता है, वो संसार से कटा छटा महसूस करता है, कटा छटा रहने लगता है। जैसे रोग के दौरान व्यक्ति अपने आप में खोया रहना, समाज में भीड़ भाड़ में नहीं जाना, परिवार से अलग रहना, अपना नहाना धोना, रहना रहन सहन, खान पीन इसका ख्याल नहीं रखना, और गंदे मैले जिस तरह से भी हो कोई सामान को कहीं से उठा के कलेक्ट करके रखना, इस तरह से मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण जो दिखाई पड़ता है वो साधारणतः रोगियों में पाया जाता है। तो मानसिक विक्षिप्तता मानसिक रोग से रोग में सबसे गंभीर बीमारी माना गया है और इसका जो आउटकम होती है, रिजल्ट भी मिलती है, थोड़ा सा पुअर होता है, क्योंकि यह लंबी बीमारी चल और लंबी दवा चलने वाली बीमारी, इस पर लंबी दवा चलती है, बीमारी में दवा खा के रोगी ठीक रहते हैं और अगर दवा बंद हो जाती तो फिर यह दोबारा ये बीमारी हो सकती है। तो मानसिक विक्षिप्तता जो होती है, तो मानसिक विक्षिप्तता में जो साइकोसिस बोलते हैं हम, जिसको मनोविक्षिप्तता बोलते हैं, वह और रोगों से अलग हटके होती है, अर्थात जो न्यूरोसिस होते हैं और उससे अलग हटके साइकोसिस में।
1: डॉक्टर साहब, ये रोग किस उम्र के लोगों को ज़्यादातर होने की संभावना होती
2: है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। रोग जो होते हैं यह ज़्यादातर जो 15 साल से ऊपर वाले ही होते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत वैसा एज का बहुत ज़्यादा इका नहीं किया गया है, पर 15 साल से उम्र वाले बच्चों में इस तरह के बच्चे से लेके बड़े तक में इस तरह के रोग के लक्षण पाए गए हैं और ये इसमें हेरिडिटी भी देखा गया है। हेरिडिटी भी 0.5% जो आते हैं यह बीमारी हेरिडिटी से होता है। अर्थात हेरिडिटी कहने का मतलब है कि जिनके माता पिता या परिवार के जो जनरेशन के पहले जनरेशन के लोग हैं उनके आने वाले जनरेशन में ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है।
1: अच्छा, ये होने की वजह क्या हो सकती है?
2: होने की कई वजह हैं। पहला कि वो सामाजिक वातावरण जिसमें वह रह रहा है वहाँ सही से उसका रियरिंग लालन पालन नहीं हुआ हो, सारी सुविधाएं जो उसकी मनोकांक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही हो, या फिर अगर हम कहें कि कुछ रासायनिक शरीर के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसका असंतुलन होना, गड़बड़ी जैसे डोपामाइन सेरोटोनिन ये सब की गड़बड़ी से इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह की बीमारी की रोकथाम के लिए साथ साथ हमको देखना पड़ता है कि किस तरह से बच्चे का बचपन में ही रियरिंग हो रहा है और लालन पालन हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह के जो बीमारी के जो ये पाए जाते हैं वो अनुवांशिकता के भी लक्षण होते हैं, अनुवांशिकता में भी ये पाए जाते हैं बीमारी।
1: डॉक्टर साहब, आजकल का जो रहन सहन है, जो खान पान है लोगों का, दूषित वातावरण भी कह सकते हैं, तो ये कितना प्रभावी है किसी के भी, लोगों के मन को विक्षिप्त करने का, उसके अंदर मानसिक रोग के बढ़ने का?
2: हाँ, ये है कि बच्चों में या अगर बोले समाज में इस तरह के जो निम्न व स्तरीय जो रहन सहन हो गया है, और उसमें भी अगर उनकी लालन पालन अच्छे ढंग से नहीं हुई है, या उनकी सुख सुविधाएं या जो बच्चे को चाहिए वो आवश्यकताओं की पूरी नहीं हुई, तो बच्चों में या कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पनपती है, और उसको पाने के चक्कर में जो है बच्चे या बड़े जो होते हैं वो कुछ ना कुछ गलत कार्य के या गलत करने के तरीके की ओर मुड़ जाते हैं, और जिससे वह कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इस रोग के शिकार होते जाते हैं।
1: अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी है, अगर मनोविक्षिप्तता की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उसमें कौन से लक्षण परिलक्षित होंगे, यानी कौन से लक्षण को देखकर समझा जा सकता है कि इसके व्यक्ति के अंदर मनोविक्षिप्तता है?
2: हाँ, सबसे पहला तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन स्तर जो है वो गड़बड़ा जाता है, या डेली एक्टिविटी वो गड़बड़ा जाता है, जिसमें नींद की कमी होने लगती है, भूख की कमी होने लगती है, अपना वो ध्यान नहीं रख पाता है, उस तरह से उसमें डर की भावना पनप जाती है, वो समाज से कटा कटा रहता है, परिवार से कटा कटा रहता है, ना उसको टीवी देखने में मन लगता है, ना किसी तरह की कोई सामाजिक जो उत्सव महोत्सव होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का उसको मन करता है, बल्कि वह कटा कटा रहता है और अकेले अकेले रहता है, वो अकेले में ही जीवन मन व्यतीत करना, और उसको उसी में ये मिलता है, लोगों के बीच भीड़ में वो जाने से कतराता है, घबराता है, वो जाना नहीं चाहता है इस भीड़ से, और वो अपने आप को अकेला रखता है, समाज से कटा हुआ रहता है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल के परिवेश में लोग जो जब बूढ़े होने लगते हैं, उनके काम का बोझ उनके ऊपर से खत्म हो गया, शरीर थक गया उनका, परिवार में सब लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वे बुजुर्ग हैं तो उनको शांति से घर में रहना पड़ता है। हो सकता है कि परिवार के कई सदस्य उनके साथ बैठने की स्थिति में ना हो, या उनका कोई लाइफ पार्टनर, उनका पारिवारिक परिवेश ऐसा हो कि वो बिल्कुल अकेले हों, तो ऐसे में इस बीमारी के बढ़ने के कितनी प्रतिशत ये बढ़ जाते हैं कारण की, ये वजह से बीमारी बढ़ना है इनके अंदर में?
2: यह वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं कहूँगा कि वो आने वाले दिनों में हमारे समाज में जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं उनके उनके लिए एक बहुत सोचनीय हम लोग के लिए एक विषय है कि वृद्धावस्था जैसे जैसे होते जाती है वैसे वैसे उसका समाज से कटते जाना या लोग उसे उपेक्षित करना, यह अपने आप में एक अपने आप उनमें बीमारी डेवलप कर जाता है, बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो समाज के लोग जो वृद्धा वृद्ध होते जा रहे हैं, या तो वह समाज से साथ जुड़े रहें, उनको घर में पूरी प्यार सहानुभूति, और जिस तरह से वो अपना जीवन पहले व्यतीत करते आए वह दिनचर्या वो कभी चेंज ना करे, उस दिनचर्या में ही वो रहे और अपना एक्टिव रहे, ज़्यादातर सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले, परिवार के साथ जुड़ के रहे, एक अच्छे सामंजस्य स्थापित करे, तो वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात है कि आज सभी के पास इतनी व्यस्तता हो गई है कि पति पत्नी के बीच में आपस में समय नहीं दे पा रहा है, लोग बच्चों के बीच समय नहीं दे पा रहा है, भाग दौड़ के जीवन इतनी ज़्यादा हो गई है कि कैसे लोगों को अपने जीवन को सरवाइव करना है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, तो इसके कारण से भी बच्चे अलग बच्चे परिवार में हैं पर उनको भी इतनी परे से पढ़ाई लिखाई की एक जिम्मेवारी रहती है, स्कूल जाना है, ट्यूशन करना है, उसके बाद आना है, खेल कूद करना है, तो उनके पास भी समय नहीं बच पाता है कि वो अपने दादाजी के पास बैठे, नानी जी के पास बैठे और अपना समय व्यतीत कर, तो इस कारण से बुजुर्ग लोग भी उपेक्षा का शिकार होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं समय की कमी भी हम महसूस करते हैं कि समाज में समय की अब कमी हो गई है लोगों के पास कि वो एक दूसरे के से दुख सुख बांट सके, और कारण जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो उपेक्षित होते जा रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे समाज के तमाम लोग स्वस्थ रहें, इस तरह की बीमारी उनके अंदर ना हो, तो ये उनके ऊपर कितना प्रतिशत निर्भर करता है कि वे स्वयं चाहें तो स्वस्थ रह सकते हैं, स्वयं की कोशिश से इस मनोविक्षिप्तता से बचे रह सकते हैं।
2: हाँ, ये है कि लोग खुद चाहें तो इस बीमारी से बच के रह सकते हैं। इसके लिए उनको अपनी जो नियमित व्यवहार, जीवन जीने की शैली, इसको अपनाना होगा। इसके लिए रोज अगर बोला जाए तो उनको रिलैक्सेशन वगैरह करना चाहिए, व्यायाम वगैरह करना चाहिए, जो आसन है, योग वगैरह है, इस पे भी करना चाहिए। अगर कोई उनकी एडिक्शन है, बुरी लत है, तो उनको परित्याग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितनी भी समय वो रह रहे हैं, अधिक से अधिक समय वो लोगों के बीच बिताए और खुशी से बिताए, और किसी भी समस्या का समाधान, अगर परेशानी हो तो वो आपस में बैठ के उसको हल करे, आपस में वो मन में रखे नहीं बल्कि उसको शेयर करे एक दूसरे से। शेयर करने से उनकी परेशानियाँ भी कम होगी और उनका जीवन स्तर भी सुधार होगा। तो जीवन स्तर को अगर हम सुधारते हैं, अपनी रूटीन को बनाते हैं, सही खान पियन, सही आचार विचार के साथ अगर हम रहते हैं तो जीवन वाकई सुखमय होगा और बुजुर्ग कोई हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि वह समाज का एक धरोहर है और इसको हम अच्छे ढंग से उनके साथ बिता सकते हैं और उनको उनसे कुछ ले सकते हैं, सीख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये बीमारी किस हद तक खतरनाक हो सकता है?
2: हाँ, ये कभी कभी ये स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि लोगों को इसकी देख रेख करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और खतरनाक इसलिए हो सकता है कि इसमें कई तरह के लक्षण होते हैं रोगियों में। कभी कभी रोगियों में परसिक्यूटरी आइडिया आते हैं, लगता है कि रोग बीमारी ऐसा लग रहा है कि कोई हमको मारने आ रहा है और उसके मन में इस तरह से डर बना हुआ रहता है। तो मारने आ रहा है, डर बना हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसके खिलाफ वो अगेंस्ट एक्शन ले लेता है। तो किसी को देख के लगता है कि वो हमको मारने आ रहा है, तो उसके जवाब में वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि ऐसा वास्तविकता नहीं है। तो उसके मन में एक परसिक्यूटरी आइडिया है, डर का भ्रम बना हुआ है ना, कि परसेप्चुअल ये होता है कि हमको लोग मारने आ रहा है, पर ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। तो ऐसी स्थिति में यह खतरनाक अपने लिए भी होता है और दूसरे के लिए भी होता है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी का इलाज क्या है?
2: इसके मुख्य इलाज तो जो फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो दवा है, ज़रूरी दवाएं तो लेना पड़ेगा और ज़रूरी दवाएं कई तरह के होती हैं। उसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपी है, व्यवहार चिकित्सा है, फिर आपका साइको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है और रिलैक्सेशन टेक्निक है। ये सारी चीज़ें को हम लोग अगर अपने जीवन में आत्मसात करें तो शायद ये बीमारी से जूझने में हमको सफलता मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब, इसके लिए जो आप कहते हैं, आप विशेषज्ञ बताते हैं कि आप मरीज को अपने पास बुलाते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं, ये एक उपाय, और इसके साथ साथ उसके जो कुछ दवा दी जाती है उनको खाने के लिए, ये सब से क्या मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है?
2: जी हाँ, ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है बीमारी, अगर नियमित ढंग से दवा ले रहे हैं, दवा का सही खा रहे हैं और उनकी सही देख रेख हो रही है तो। और साथ ही साथ दवा के साथ साथ उनकी अगर लाइफ को चेंज किया जाए, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, तो वाकई फायदा होगा और वो अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर सुनील कुमार जी, आज आपने हमारे तमाम श्रोताओं को मानसिक रोग मनोविक्षिप्तता पे बड़ी अच्छी अपनी जानकारी दी। दोबारा जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस कार्यक्रम में आपको फिर आमंत्रित करेंगे और अपने तमाम श्रोताओं को इस मनोरोग पे, मानसिक रोग पे उन्हें हम जागरूक करेंगे, जानकार बनाएंगे और इससे भरसक दूर रहें, इसका प्रयास हम सभी मिलकर करेंगे। आप हमारे कल्याणी कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी आपको।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता मनोविक्षिप्तता कारण एवं बचाओ। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर सुनील कुमार, मनोचिकित्सक पलामू।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आशिकी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

आरजू फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, आनंद बख्शी के बोल थे और अनु मलिक का संगीत था। अगला गीत आई सुनते हैं दरार फिल्म से। आवाजें हैं अभिजीत और साधना सरगम की, शब्द रचना राहत इंदौरी की है और इसकी तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

दरार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अभिजीत साधना सरगम और साथियों की। गीतकार थे राहत इंदौरी और संगीतकार अन्नू मलिक।

अकेले हम अकेले तुम। लीजिए सुनिए इस फिल्म का अगला गीत, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार अन्नू मलिक। इसी गाने के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई सोच नया कदम। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं विशेष भेंट वार्ता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभुक से। भेंट वार्ताकार हैं श्री अजय कुमार मेहता हिसरा बरवाड़ी पाटन पलामू से। भेंट करता हैं संतोष कुमार। प्रस्तुति श्री प्रशांत गौरव की है।
1: संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता हमें पड़ जाती है ताकि हम विकास कर सकें कृषि के क्षेत्र में। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलाए गए हैं सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है और इससे कृषि हेतु बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। आज हमारे साथ हैं कार्यक्रम में एक सफल किसान जो मनरेगा से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। आप हैं पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाड़ी गांव के एक किसान अजय कुमार मेहता। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: मनरेगा से आपने किन किन कार्यक्रमों का लाभ लिया अजय कुमार मेहता?
2: मनरेगा से मैं सबसे पहले कुआं का लाभ लिए, इसके बाद डोभा करवाए, इसके बाद हम लोग मेलबंधी आता है,
1: अच्छा,
2: उसका लाभ हम लोग लिए। और जैसे कुआं का लाभ लिए तो कुआं हम लोग किसान के लिए बहुत जरूरत की चीज है। उसमें सिंचाई के लिए हम लोग को हर खेत में दो कुआं एक और साथ में बनवाए थे और एक और बनवाए, तो जहाँ जहाँ जरूरत था वहाँ हम लोग कुआं का लाभ लिए। और जगह जगह डोभा, जिसे पानी का संचय रोकने के लिए डोभा का भी निर्माण मनरेगा के तहत हुआ है। और इसके बाद हम लोग को जैसे ज़्यादा बारिश होता है तो मेड़ तोड़ करके भाग जाता है, उसमें मेड़बंदी सरकार मनरेगा के तहत इस योजना किसान को खेत में चलाने का काम किया है। जो किसान अपने मेड़ को अच्छी तरह बांध देते हैं जो पानी जमा होता है।
1: कुआं का लाभ आपने कब लिए थे?
2: कुआं हम लोग 18-19 में लिए थे।
1: डोभा कब बनवाए?
2: डोभा वही 20-21 का था।
1: तो डोभा से क्या क्या फायदा लेते हैं अभी आप?
2: डोभा से देखिए पलामू का जो भी है पानी का लेयर तो खैर कम रहता है, लेकिन जहाँ लेयर में है अच्छा है। और उसमें जैसे पानी हम लोग के बगल में जमीन है, थोड़ा सा बरसात के समय में डोभा में पानी जमा हो जाता है, इससे हम लोग को धान उन का मैंने सिंचाई हम लोग कर लेते हैं उससे। और कुछ मछली उछली भी डाल देते हैं तो 2-3 महीना रह जाता है तो मछली भी हो जाता है।
1: अच्छा, यानी मछली पालन भी डोभा से आप कर लेते हैं?
2: जी जी।
1: तो इस वर्ष मछलियाँ पाले हैं कि नहीं?
2: हाँ मछली है।
1: जैसे
2: मछली है वो एक बंगुरी हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या है उस तरह का मछली है अभी जो कि अब निकालेंगे।
1: और मतलब बंगुरी बड़ी बड़ी हो चली?
2: हाँ हो गई है।
1: कब लगाए थे इसका बीज?
2: वो बरसात बारिश हुआ कुछ, इस वर्ष तो बारिश बहुत कम हुआ, लेकिन वो उस जगह हम लोग पंप का पानी से कुछ डोभा में डाले,
1: अच्छा,
2: और उसे उपयोग किए और पानी का लेयर अभी भी वही मेंटेन करके रखे हैं हम लोग कुआं से।
1: अच्छा, कुआं से भी मतलब कि उसमें पानी डालने का कार्य करते हैं?
2: हाँ, पानी डालने का काम करते हैं
1: और सिंचाई वगैरह का,
2: सिंचाई का भी काम होता है।
1: अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था मेड़बंदी की बात आपने की थी, वो मेड़बंदी क्या है हमारे किसान भाइयों को समझाएं?
2: देखिए जैसे बरसात के समय में बहुत से किसान का खेत से पानी बहने लगता है, ज्यादा बारिश हुआ टूट करके इधर उधर हो जाता है अपना, जैसे मेड़ हुआ अपना आर, हर किसान का एक सीमा है आर है, उस आर बह जाता है। तो सरकार ने इस आर के लिए और मनरेगा मजदूरी के लिए भी किसान को दिया कि भी किसान अपने से भी कराए और मजदूर से भी करा करके किसान भी कमाए और मजदूर भी कमाए और किसान का भी मेड़ जिसे आरी जो तैयार हो गया, मेड़बंदी जो कहे हैं किसान अपना मेड़ आरी भी तैयार हो गया जिसे पानी सिंचित, कहीं फिर बारिश होगा तो पानी बह करके कहीं दूसरे खेत में नहीं जाएगा, नमी बनाए रखता है।
1: अच्छा, अपने ही मतलब खेत में आपका नमी बना रहेगा। और नमी बने रहने से क्या है कि आप जिस भी फसल का रोपण करेंगे चाहे जिस फसल की खेती आप कर रहे हैं वो फसल में उत्पादन आप अच्छी तरह से ले सकेंगे।
2: जी जी। और एक और है उस योजना में TCB।
1: अच्छा,
2: जो TCB है मनरेगा के तहत ही है, उसका 12 फीट लंबाई है खुदाई करना है, लंबा गहराई उसको 4 फीट करना है।
1: तो ये टीसी भी क्या?
2: टीसी भी है वो जो पानी संचय करने के लिए, जैसे कहीं ढाल ज्यादा ढाल है तो उसके नीच में ये टीसी भी होता है 4 फीट गहराई करके और 12 फीट लंबा, 50-60 गड्ढा करीब करीब एक योजना में होता है जो पानी को धरती में संचय रखने के लिए, वो टीसीबी का काम भी करवाए हैं।
1: कब करवाए टीसीबी?
2: टीसीबी हम लोग 2021 में करवाए।
1: तो उससे अभी आपको काफी फायदा होगा?
2: हाँ, पानी का जो है से लेयर उस जगह अगल बगल मेंटेन रहता है और उसे यही होता है कि पानी जैसे ढल के कहीं नदी नाला में चला जाता है तो उस पानी जब बारिश होता है तो उस बारिश जो है से धीरे धीरे उस गड्ढा में जमा हो जाता है, इसके बाद धरती में वो पानी
1: रिस जाता है
2: और वो नमी बरकरार रहता है खेत के अगल बगल।
1: अगर हमारे किसान भाई लोग जुड़ना चाहें इस कार्यक्रम से, लाभ लेना चाहें, तो क्या कर सकते?
2: मनरेगा के तहत अपना है, मुखिया है, रोजगार सेवक है और उनके पास जाएं अपना काम के लिए, भाई मेलबंदी है, चाहे कुआं है, डोभा है, अपना वहाँ योजना चलता है और मुखिया अपना खोल देते हैं और उसमें काम करवाते हैं, जितना का एक जेई रहते हैं, जेई अपना बना देते हैं एस्टिमेट कि जैसे 50,000 का डोभा है, 60,000 का है, 80,000 का है और मेलबंदी है जैसे 16,000 का भी है और डबल हो गया तो 32,000 का भी है। तो जैसे किसान की जितनी आवश्यकता, जितने लंबाई जमीन है, जितना 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उस हिसाब से किसान अपना काम अपने खेत में करा करके किसान अपना खेत को भी अच्छी तरह से बन भी जाएगा और फसल उगाने में सुविधा हो जाता है।
1: अब हम आते हैं कि आपने क्या क्या प्रशिक्षण लिया? आप यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं
2: जी,
1: और कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी से भी
2: जी,
1: क्या क्या प्रशिक्षण लिया अभी तक?
2: हम लोग वहाँ जिसे कोई भी फसल हम लोग लगाए तो उसमें कितना खाद डालना है, कितना दवा डालना है, किस समय खेती करना है, जैसे अभी हम लोग का आलू का सीजन है, गोभी, मटर, फ्रेश बीन सारा खेती के लिए अभी उपलब्ध समय है। इस समय जो किसान अभी लगाएंगे वो अच्छा उत्पादन होता है। अभी का मौसम थोड़ा सा ठंड है और गर्मी भी है और थोड़ा सा गर्मी के कारण बहुत जल्द पौधा जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होगा और पौधा ठंडा में ज्यादा लेट होगा, ग्रोथ भी ज्यादा नहीं करता है और फिर आगे चल के दिसंबर से जनवरी में बहुत यहाँ ठंड ज्यादा पड़ता है तो पौधा का नुकसान भी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल,
2: इसलिए किसान
1: समय खेती करनी चाहिए। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर आपने तो प्रशिक्षण प्राप्त की कि किस प्रकार खेती करनी चाहिए और क्या लाभ अर्जित किए?
2: हाँ, वहाँ से हम लोग जैसे कृषि यंत्र हम लोग को जिला कृषि के तरफ से मिला था,
1: कार्यालय के तरफ से
2: हम लोग।
1: अच्छा, वहाँ जाने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र से जुड़ने के बाद पता चला कि हमें अनुदानित दर पे कृषि यंत्र भी दिए जाते हैं। वो जिला कृषि कार्यालय से आपने प्राप्त किए
2: और वहाँ से जैसे हम लोग दवा छिड़कने के लिए भी प्राप्त किए। जैसे कृषि यंत्र में है कि जैसे उसमें ट्रैक्टर जिस किसान के पास है चाहे नहीं है, दूसरे के किसान ट्रैक्टर लेकर के बुआई करने के लिए वो
1: यंत्र लगा हुआ
2: रहता है। जैसे सरसों लगाना है तो सरसों का उसमें बदलना पड़ता है और खांचा बदल करके जो भी जो चीज लगाना है, मक्का लगाना है, बादाम लगाना है, चना लगाना है, तो सभी तरह का यंत्र है और उसे किसान बुआई करने में सुविधा होता है, लाइनिंग बुआई होता है उससे।
1: तो ये सारे फायदा मतलब लिए जा रहे हैं
2: जी, जी।
1: और अनुदानित दर पे आपने प्राप्त?
2: हाँ, अनुदानित।
1: अभी कौन कौन से यंत्र हैं आपके पास?
2: हम लोग वही गेहूँ

0: दवाई के लिए है और दवा छिड़कने के लिए हम है वही। फिर डीजल पंप भी हम लोग लिए हैं, वहाँ से डीजल पंप तो उपयोग में है, हम लोग किसान की जरूरत का चीज़ है
1: अनुदानित दर पर।
0: अनुदानित दर पर।
1: अच्छा, तो इस प्रकार से खेती बाड़ी चल रही है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में किस फसल की खेती कर रहे हैं आप?
0: अभी हर तरह का सब्जी और खाने के लिए हर तरह का सब्जी लगाया जा रहा है।
1: आप मनरेगा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं
0: जी
1: और उसका बहुत सारा लाभ आपने मनरेगा कार्यक्रम का लिया, और फिर उसके बाद फिर आप कृषि यंत्र भी लिए जिला कृषि कार्यालय से।
0: जी
1: जब आप मनरेगा से नहीं जुड़े थे
0: जी
1: तब की स्थिति, आज की स्थिति में क्या अंतर पाते हैं?
0: जैसे मनरेगा से हम लोग जुड़े हुए नहीं थे उस समय, जैसे आज के दौर में जब कुआं कुआं अब ऐसे नहीं, पहले बाबा दादा हम लोग को बोलते थे कि रिलीफ का कुआं हमारे पास है, रिलीफ उस समय हम लोग को याद नहीं है, लेकिन बाबा बोलते थे कि नहीं कुआं रिलीफ से हम लोग को मिला था, उस समय धान चावल गेहूं मिलता था और उसी से मजदूरी से हम लोग की कुआं बांधे हैं, लेकिन अब मनरेगा के तहत कुआं आ गया है, वो मजदूर उसको काटेगा, मजदूर है तो काटेगा ना, तो अपना ही से भी लग करके मजदूरी करके अपना कुआं भी हो गया और कुछ मजदूरी भी हम लोग कमा लिए। और मनरेगा के तहत बहुत तरह से लाभ है, जिसे अभी आम बागवानी आया है
1: अच्छा, हाँ
0: उसमें हर तरह का आप पौधा लगा सकते हैं, जैसे जिसको ज़रूरत है, आम की ज़रूरत है, नींबू की ज़रूरत है, अमरूद की ज़रूरत है, जो हम लोग आंवला भी यहाँ हमारे यहाँ चार फल जो है से उत्पादन बहुत अच्छा होता है, नींबू आंवला अमरूद आम, तो जैसा पपीता, तो जैसा किसान समझे कि हमको इसकी ज़रूरत है
1: और उसकी खेती वो
0: उसकी
1: करें।
0: खेती करें, सबसे बेहतर मनरेगा के तहत जो आम बागवानी आया है सबसे बेहतर
1: इसका बहुत से
0: योजना
1: ग्रामीण
0: है।
1: लोग लाभ दिल।
0: हाँ हम लोग लिए हैं और आम भी हम लोग का हम लोग 18 19 17 18 में हम लोग लिए हैं,
1: अच्छा, और अभी बिक्री कर रहे हैं हम।
0: पौधा बढ़ा तो अभी तैयार हो रहा है, पिछले साल से भी फल आ रहा था,
1: अच्छा, तो
0: तो
1: पिछल का फल तो लोग पहले शुरू में जो फल आना शुरू होता है प्रथम दौर में, तो उसको तो लोग तोड़कर हटा देते
0: हाँ
1: हैं।
0: इसलिए तोड़ के हटा देते हैं कि पौधा छोटा रहता है, अगर फल छोटा में ही आएगा तो पौधा का नुकसान होने लगता है, तो कम से कम 2 सीजन वो हम लोग फूल को हटा देते हैं, तीसरा बार से हम लोग आना स्टार्ट हो जाता है।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़ी भी जानकारियां साझा की, और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं धरातल पर उसके लाभ के बारे में जानकारियां साझा की। आप उसके लाभुक भी हैं, आज उससे जुड़कर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपकी खेती फल फूल रही है। आप कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद अजय कुमार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई सोच नया कदम। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता आपने सुना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभुक से। भेंटवार्ताकार थे अजय कुमार मेहता, हिसरा बरवाटी पाटन पलामू से। भेंटकर्ता थे संतोष कुमार। प्रस्तुति श्री प्रशांत गौरव की थी।

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना, 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर TST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब मिथानोल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
7: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की एक लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एंक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है, जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में, जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
8: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 पीएचडी स्कॉलर्स को पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ी

0: भारतीय को गर्व है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
2: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
1: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
4: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to cooperate, identify new avenues for defense cooperation. As Jay Shankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major powers. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as the center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Bach-Melon. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, young mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैनुल अक्वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 माहदों पर दस्तखत किए गए। ये माहदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पहमला के दरमियान दो तरफा मुजाकरात के बाद तय पाए। इन माहदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकतदारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निजाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और तआवुन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत नामे, समझौते और बाहमी तआवुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया।
2: बोथ साइड्स एक्सचेंज्ड द मेमोरेंडम ब्रिंग द इश्यू। वन, एमओयू ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। सेकंड,

0: पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लिया और तजारत और सरमायाकारी, इख्तिरा और एआई, फौजी तबादले और दिफाई साजो सामान, न्यूक्लियाई तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में मजीद गहराई पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। स्विट्जरलैंड के सदर ने वजीर आजम के मौकफ, खुसूसन इस पैगाम को बहुत सराहा कि ये जंग का नहीं बल्कि अमन का दौर है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सदर पामेला भारत के 3 रोजा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 3 हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर तकर्रुर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कानून इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मुत्तला किया कि सदर जमहूरिया ने गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर किया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर

0: उसे अमेरिका, रूस और चीन समेत सभी अहम ममालिक से जोड़ने के काबिल बनाता है। डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत और दुनिया मुताबिकत पसीरी के मौजू पर 5वें कौटल्य इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका को भारत का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार, सबसे बड़ा इक्तसादी और तिजारती साथी और बड़ा दिफाई शराकत दार करार दिया। उन्होंने कहा कि उथल पुथल भरे इस दौर में भारत को हर महाज पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जनाब जयशंकर ने वाजे किया कि दुनिया कसीर कुतबियत की जानिब गामजन है, जिसका ढांचा और ज्योमेट्री माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के आने वाले राज्यसभा पोलिंग के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोमकर, गोपी कृष्णा पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी के मरकजी इंतखाबी कमेटी के जरिए इन नामों की मंजूरी दी गई है। हर 2 साल में एक बार होने वाले चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए उत्तराखंड में 1 सीट के लिए और मगरबी बंगाल से 1 सीट के जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इस माह की 16 तारीख को होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम 6 सीटों के लिए पोलिंग कल होगी, जबकि वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। आसाम के लिए एक तारीखी संग मील के तौर पर बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना किया। इस पेशरफ्त के साथ ही तकरीबन 80 साल बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र की आलमी तिजारती रास्ते के तौर पर बाजियाबी हुई है। इस इकदाम से शिमाल मशरकी खित्ते के लिए एक बराह रास्त, माहौल के लिए साजगार और कम लागत वाली तिजारती राहदारी फराहम होती है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत के अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के शोबे में आज एक नए बाब का आगाज हुआ, जब मेथनॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पानगांव बंदरगाह के लिए रवाना की गई। इससे पहले बैन अल-अक़वामी कार्गो बहरी जहाज को रवाना करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने एतमाद जाहिर किया कि यह टर्मिनल खित्ते की माशी तरक्की में नुमाया रोल अदा करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत बोगीबील टर्मिनल में जहाजरानी के शोबे के लिए हुनरमंदी की तरक्की का मरकज कायम करेगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। तवक्को है कि मरकज आइंदा 10 वर्षों में आसाम और शुमाल मशरिक के 50,000 नौजवानों को बहरी और जहाजरानी की सनात में रोजगार के मौके के लिए तरबियत दी जाएगी। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा वर्चुअल वसीले से जहाज को रवाना करने की तकरीब में शामिल हुए। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि किस तरह वंदे भारत ट्रेनों की आमद ने इस विजन को हकीकी शक्ल दी है। पेश एक रिपोर्ट।
2: ऐसे में जब भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब गामजन है, मोबिलिटी कौमी तरक्की के मरकजी सुतून की हैसियत से उभरी है। वंदे भारत ट्रेनें मुल्क भर में भारतीय रेलवेज की तेज, महफूज, ज्यादा काबिल एतबार और मुसाफिर मरकूज रेल खिदमात पहल के तौर पर नुमाया हुई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली वाराणसी रूट से अपने सफर की शुरुआत गुज़िश्ता 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के इफ्तिताह के दौरान वजीर आजम ने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज की अगली नस्ल की बुनियाद रख रही हैं।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के खातिर अगले 2 साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान आज नाबन्ना में मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मनसूबे में हासीमरा और कलाईकुंडा में शहरी इनक्लेव, बालोर घाट हवाई अड्डे की तौसी और पुरोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाक 2700 मीटर का रनवे बोइंग काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या तिरुपति जैसे भारत मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका फौजी मश्क माउंटेन गार्डियन 2026 आज उत्तराखंड में शुरू हुई। ये फौजी मश्क पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी मफाहमत और तालमेल में इजाफा करने के मकसद से की जा रही है। वजारत दिफा के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज की यकसा तादाद में नुमाइंदगी है और इस मश्क में कुल 92 फौजी अहलकार शिरकत कर रहे हैं। ग्रेड कायम करने, ड्रोन कार्रवाइयों, जंगी हिकमत अमली की तरबियती मश्क, जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त की तरबियत, चट्टानों पर चढ़ना, रुकावटों को पार करना और मजबूत मवासलात के मरकज वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के मामले में दुनिया की क्यादत करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपोजियम 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत टेली मवासलात के आला दरामद करने वाले मुल्क से निकलकर अब बरामदकार बन गया है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर जनाब राहुल गांधी के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर तब्दीली की है। कमीशन ने वजाहत की कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ मुंसलिक डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार में SIR से मुतालिक हुक्म पिछले साल 24 जून को कमीशन के जरिए इत्तेफाक राय से मंजूरी के बाद जारी किया गया था। कमीशन ने इस बात को भी उजागर किया कि इस साल 27 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में कमीशन की जानिब से किसी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई है। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइसरोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और गेओर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीक़ेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिले जिक्र हुसूलियाबियों की बिना पर दिया गया है। ये तरीक़ेकार जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावकार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया जबकि अमरीकी साइंसदान डाइसरोथ ने प्रोटीन को आसावी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया। और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नजर उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक़वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा
1: पास से वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
2: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो तो आँखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों
1: अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देके देखो।
0: प्यार की कसम है न देख ऐसे।

0: न देख ऐसे प्यार से
1: उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई।

उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना, जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए, जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दनबाई से हुई, जो खुद एक संगीतकार थी। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखीं और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत ने प्रेरित किया।

जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया।

0: चले तो।
1: सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया और इस तिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया।

फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया।

है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया, जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया। लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा।

दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज धार, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप, शब्बीर, सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने गाने दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के जे येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया। मधुबन

7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में जन्मी उषा खन्ना ने संगीत के क्रिकेट की एक लंबी और बेहतरीन पारी खेली है।

0: क्या दिए।
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर। संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

ख़ानदान फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ भूपेंद्र लता मंगेशकर की थी। गीत लिखा था नक्शलाल पुरी ने और इसकी तर्ज बनाई थी खय्याम ने। अगला गीत आइए सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से आवाज़।

जोशीले फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और इसकी तर्ज बनाई थी आर डी वर्मन ने। नसीब फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म दयावान से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की। अजीज कैसी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

देवान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की, अज़ीज़ कैसी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी नगमे। तो कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म के इस नगमे से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

पत्थर के सनम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लाल किला फिल्म का गीत आई सुनते हैं। आवाज़ जी हाँ मोहम्मद रफ़ी की है। शब्द रचना बहादुर शाह जफर की है और तर्ज एस एन त्रिपाठी की।

हम दोनों फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे और जयदेव ने इसमें संगीत सवारा था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की अगली पेशकश है गज़ल फिल्म से। आवाज़ जी हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब की है। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और ये है एक रंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म खिलौना से। आवाज़ जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशन ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.